1942 लव स्टोरी का ये खूबसूरत सा गाना अभी हम सुन रहे थे। बारिश एक ऐसा मौसम है जिसमें बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ जाती हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी, बहुत सारी यादें। और इन यादों के साथ हमें जीना अच्छा लगता है, क्योंकि यादें ही तो हैं जो सबसे बड़ी ताकत बनती हैं हमारे लिए। जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर हमारे पास अच्छी यादें हमारे साथ बनी हुई हैं तो हम जिंदगी को बहुत ही खूबसूरती से जी लेते हैं। और जैसे जैसे बारिश का मौसम पास आते जा रहा है और लग रहा है कि बारिश होगी, और बारिश जब होगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। सिर्फ पत्तों पर से धूल नहीं हटेंगे, बल्कि हमारी सोच से भी कई ऐसी चीज़ें हट जाएंगी जिन्हें शायद हम बहुत वर्षों से हटाने की कोशिश कर रहे थे। और इन बातों को करते करते एक ऐसा गाना मुझे याद आया है आपको सुनवाने का, जिसे अपने समय में लगेज सॉन्ग के नाम से जाना जाता था। और इस गाने को हम जब भी सुनते हैं हमें वाकई ऐसा महसूस होता है कि कई ऐसे सामान हैं जो हमारा किसी और के पास रह गया है और शायद हम उसे लेना भूल गए हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं इजाज़त मूवी का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, जिसे आशा भोसले ने अपनी आवाज़ से हमेशा के लिए अमर बना दिया।

इजाजत मूवी का ये खूबसूरत सा गाना अभी हम आशा भोसले की आवाज़ में सुन रहे थे। कई गाने ऐसे होते हैं ना जिनको जब भी आप सुनिए तो आपको यादों के किसी बक्से में ले जाकर कैद कर देते हैं, और यही खासियत इस गाने की थी। बहुत सारी यादें हमारे आंखों के सामने आ गए और बहुत सारी चीज़ें भी, ऐसी चीज़ें जिन्हें शायद हम बहुत दिनों से अपने दिलों में कहीं कैद करके रखे थे, और वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। गानों की खासियत ही यही होती है कि जब आप गाने सुनते हैं ना, आपकी आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, और इसीलिए गाना सुनना भी गुनगुनाना भी हमारी ज़िंदगी बनती जा रही है। सखियो, आज हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी ज्ञान वाली बातें की जिनसे आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है, और साथ ही साथ हमने आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने भी सुनवाए। और इसी के साथ अब हमारा आपसे विदा लेने का समय हो चला है। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपनी दोस्त रानू सिंह को दीजिए विदा। लेकिन जाने से पहले उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गाना आपके लिए छोड़े चल रही हूँ, ताकि आप इस बारिश का आनंद ले पाइए, क्योंकि ये बारिश की बूंदें टिप टिप करके हमारे चेहरे पर पड़ने वाली हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के समय 1 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।

0: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। कार्यक्रम किसले में सुनिए वार्ता। विषय है एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरे। वार्ताकार सीमा कुमारी।
1: एकल उपयोग प्लास्टिक के सामानों को मात्र एक बार उपयोग करने के बाद तुरंत फेंक दिया जाता है। जहां इन सामानों के उपयोग से थोड़ी सुविधा तो होती है, लेकिन ज्यादा

का नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग तेजी से इसका प्रयोग कर अपने लिए खतरा मोल लेते हैं। इसमें प्लास्टिक की थैलियाँ, डिस्पोजल प्लास्टिक, स्ट्रॉ, सोडा या पानी की बोतलें शामिल हैं। पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन दुनिया में सबसे आम प्लास्टिक है, लेकिन इसे तीन प्रकार में बांटा गया है, उच्च घनत्व, कम घनत्व और रैखिक कम घनत्व। उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन मजबूत, नमी और रसायनों के लिए प्रतिरोधी है, जो इसे डिब्बों, कंटेनरों, पाइपों और अन्य निर्माण सामग्री के लिए आदर्श बनाती है। प्लास्टिक के प्रयोग से हमारे जीवन में खतरे बढ़ रहे हैं। मेलामाइन नामक प्लास्टिक एक ताप स्थापी प्लास्टिक है। मेलामाइन उष्मा का प्रतिरोध करता है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में उष्मा को आसानी से सहन कर लेता है। पारंपरिक प्लास्टिक अक्सर पर्यावरण पर कहर बरपाते हैं, वे लैंडफिन को भर देते हैं, जमीन या पानी में कूड़े के रूप में समाप्त हो जाते हैं, कई जानवरों के लिए जहरीले होते हैं और अक्सर आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। वे हजारों वर्षों तक कूड़े के रूप में जीवित रह सकते हैं। आमतौर पर इनका उपयोग पैकेजिंग में किया जाता है। इनमें किराना बैग, खाद्य पैकेजिंग, सिगरेट बर्ड्स, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के ढक्कन, स्ट्रॉ और स्टीरर प्लास्टिक के कंटेनर, कप और कैटलरी का सामान शामिल है। अधिकांश प्लास्टिक नष्ट होने वाले बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। प्लास्टिक का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें पैकेजिंग, कपड़ा उपभोक्ता उत्पाद, परिवहन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक मशीनरी शामिल है। एकल उपयोग की वस्तुओं में हाइपोडर्मिक सुइयां, टॉयलेट पेपर, डिस्पोजेबल तौलिए, कागज तौलिए आदि शामिल हैं। प्लास्टिक हमारे जीवन में खतरनाक प्रभाव डालते हैं। प्लास्टिक गर्मी और धूप में पिघलती है और उसके साथ ही जहरीली रासायनिक पदार्थ भी पिघलने लगता है, जो खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर जाकर कैंसर को जन्म देता है। प्लास्टिक से बने बच्चों के खिलौने, उनमें जिन रंगों का प्रयोग होता है, वो बेहद खतरनाक होता है। आम तौर पर हम बाजार से पॉलीथीन में भी कुछ सामान ले आते हैं। यदि वो पदार्थ गर्म रहता है तो धीरे धीरे पिघल कर उस खाद्य पदार्थ में घुल जाता है और हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अस्पताल के बाहर चाय की दुकानें होती हैं और वहां मरीज के परिजनों की भीड़ लगी रहती है। परिजन एकल प्लास्टिक में चाय लेकर मरीज के पास जाते हैं तथा चाय पीने के लिए भी एकल प्लास्टिक ग्लास का प्रयोग करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। प्लास्टिक में मौजूद हानिकारक रसायन घुलनशील होते हैं और चाय के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, फलस्वरूप खतरनाक बीमारियों की चपेट में हम आ जाते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो बोतलें प्रयोग में लाई जाती हैं, वो यदि प्लास्टिक की हैं तो बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। माताओं को प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार खाने पीने की चीजों की पैकिंग में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ता है। लोगों को प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाने पीने के सामान की पैकिंग करने से बचना चाहिए और प्लास्टिक की बोतल की जगह बांस या कांच की बोतलों का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खराब है। प्लास्टिक वैश्विक उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इसका उत्पादन और निष्पादन पृथ्वी पर सभी प्राणी तथा वनस्पति जगत के लिए एक बड़ा खतरा है। प्लास्टिक आमतौर पर लगभग 500 से 1000 वर्षों में खराब हो जाती है। हालांकि हम वास्तविकता में इसके खराब होने का समय नहीं जानते हैं। प्लास्टिक पिछले कई शताब्दियों से ज्यादा उपयोग में लाई जा रही है। इसके निर्माण के दौरान कई खतरनाक रसायन निकलते हैं, जिससे मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों में भी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। एथिलीन ऑक्साइड, जाइलीन और बेंजीन प्लास्टिक में मौजूद कुछ रासायनिक विषाक्त पदार्थ हैं, जो पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं।
इसे समाप्त करना आसान नहीं है और यह जीवित प्राणियों को अस्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। प्लास्टिक में पाया जाने वाला कई योगशील जैसे पैथेलेट,

एवं यहाँ तक कि एल्काइलिफिनोल को जहरीले सामग्री के रूप में मान्यता दी गई है। विनाइल क्लोराइड, जिसका उपयोग पीवीसी पाइपों के निर्माण में किया जाता है, इस रसायन को कैंसर का जनक कहा जाता है। प्लास्टिक महंगा नहीं है, इसलिए ये अधिक उपयोग किया जाता है। धीरे धीरे प्लास्टिक ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। जब इसको समाप्त किया जाता है तो ये आसानी से विघटित नहीं होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। एक बार उपयोग करने के बाद ही लोग प्लास्टिक की बोतलों को फेंक देते हैं, प्लास्टिक बैग को भी फेंक देते हैं, जिसके कारण धरती के साथ साथ महासागरों में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। भारत में लगभग 10 से 15 हजार इकाइयां पॉलीथीन का निर्माण कर रही हैं। जब से पॉलीथीन प्रचलन में आया, पुरानी पद्धतियां धरी की धरी रह गईं और कपड़े, जूट और कागज की जगह पॉलीथीन ने ले ली। प्लास्टिक का प्रयोग एक बार करने के बाद फेंक दिया जाता है। पॉलीथीन का विघटन नहीं हो पाता है, जिससे प्रदूषण तेजी से फैलता है। यहाँ तक कि हिमालय की वादियों को भी दूषित कर चुका है। आज प्रदूषण की समस्या इतनी बढ़ गई है कि सरकार भी इसके निवारण के लिए अभियान चला रही है। सैर सपाटे वाले सभी स्थान इससे ग्रस्त हैं। प्लास्टिक बैगों के अंदर सिंथेटिक पॉलीमर नामक एक पदार्थ होता है, जो कि पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसी वजह से इसका निस्तारण भी काफी कठिन है। प्लास्टिक वजन में काफी हल्के होते हैं, इसलिए ये हवा द्वारा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उड़कर इधर उधर बिखर जाते हैं। ये केवल शहरों और कस्बों में ही प्रदूषण नहीं फैलाते, बल्कि जलीय स्रोतों और महासागरों में पहुंचकर समुद्री जीवों को भी खतरा पहुंचाते हैं। पॉलीथीन और प्लास्टिक का दुष्प्रभाव पेड़ पौधों पर भी तेजी से हो रहा है। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। वह जीवनदायी ऑक्सीजन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। दुर्भाग्य से हम मनुष्यों द्वारा ईश्वर के द्वारा बनाई इस सृष्टि की रचना को नष्ट किया जा रहा है। प्लास्टिक जब उड़कर इधर उधर जाती है तो हमारी मृदा को भी प्रभावित करती है। भूमि की उर्वरा शक्ति तो समाप्त होती ही है, साथ ही साथ पेड़ पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है। नर्सरी में पारंपरिक प्लास्टिक बैग का उपयोग पौधों के लिए किया जाता है। प्लास्टिक बैग से जुड़े कई नुकसान हैं, जैसे कि जैव अपघटन योग्य नहीं होता, संरंध्रता न होना, अतः पर्यावरण अनुकूल नहीं है। अंकुरण के बाद जड़ की वृद्धि के लिए बैग को फेंकना पड़ता है और यदि इन बैगों को ठीक से एकत्रित कर विनष्टीकरण नहीं किया जाता है तो पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पालतू पशुओं या वन्य प्राणियों की बात करें तो उनके लिए भी प्लास्टिक बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। पॉलीथीन की ढेर में खाना तलाशती गायें हमें अक्सर दिख जाती हैं। गायें भोजन के साथ साथ पॉलीथीन भी खा जाती हैं। पॉलीथीन उनके पाचन तंत्र में जाकर फंस जाता है। अत्यधिक प्लास्टिक खा लेने से उनके गले में भी फंस जाता है और गाय की मृत्यु तक हो जाती है। जानवरों के पेट में प्लास्टिक एकत्रित होने से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। बढ़ते भूमि और जल प्रदूषण में भी प्लास्टिक बैगों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए पर्यावरण का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहा है। एकल प्लास्टिक का उपयोग भूमि और जल को तो प्रदूषित कर ही रहा है, हमारे जलवायु को भी प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। प्लास्टिक बैग सामान्यतः पॉली प्रोपाइलीन से बने होते हैं, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बनता है। ये दोनों ही अनवकरणीय जीवाश्म ईंधन है और इनके निष्कर्षण से ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमें प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी का जीवन बेहतर हो सके। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। पॉलीस्टायरीन और विस्तारित पॉलीस्ट्रीन सहित एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर

0: हैं, जैसे जैव अपघटन योग्य नहीं होना, अतः पर्यावरण अनुकूल नहीं है। इसके अलावा अंकुरण के बाद जड़ की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए बैग को फेंकना पड़ता है, और यदि बैग ठीक से एकत्रित कर नष्ट नहीं किया जाता है तो पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में हर एक इंसान बेहद जरूरी कदम उठा सकता है। सतर्कता और जागरूकता दो बेहद जरूरी चीजें हैं जिसे प्लास्टिक के खिलाफ अपनाया जा सकता है। प्लास्टिक के बैग्स को संभाल कर रखें, इन्हें कई बार इस्तेमाल में लाएं, सामान खरीदने जाने पर अपने साथ कैरी बैग लेकर ही जाएं। ऐसे प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही फेंकना होता है, जैसे प्लास्टिक के पतले ग्लास, तरल पदार्थ, पीने की स्ट्रॉ और इसी तरह का अन्य सामान। मिट्टी के पारंपरिक तरीके से बने बर्तनों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। प्लास्टिक की PETE और HDPE प्रकार के सामान चुनिए, ये प्लास्टिक आसानी से रिसाइकल हो जाता है। प्लास्टिक बैग और पॉलीस्ट्रीन फोम को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें, इनका रिसाइकल रेट बहुत कम होता है। आप कम से कम प्लास्टिक सामान फेंकने की कोशिश करें। अपने आसपास प्लास्टिक के कम इस्तेमाल को लेकर चर्चा करें। हमारे देश में भी कई ऐसे सेंटर स्थापित हो गए हैं जहां प्लास्टिक रिसाइकल किया जाता है। अपने कचरे को वहां पहुंचाने की व्यवस्था करें। खुद प्लास्टिक को खत्म करने की कोशिश न करें, न पानी में, न जमीन में, और न ही जमीन के भीतर प्लास्टिक खत्म होता है। इसे जलाना भी पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक होता है। प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान के बारे में जान लेना भी अपने आप में नाकाफी है। सरकार और पर्यावरण संस्थाओं के अलावा भी हर एक नागरिक की पर्यावरण के प्रति कुछ खास जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो पर्यावरण से होने वाले हानि को बहुत हद तक समझ लिया जाएगा और इसे बहुत हद तक कम किया जा सकेगा। खुद पर नियंत्रण इस समस्या को काफी कम कर सकता है। एकल उपयोग करने वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि हम इससे होने वाले प्रदूषण से बचें। प्लास्टिक से वातावरण को गंभीर नुकसान होता है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। यदि प्लास्टिक का इस्तेमाल रोका जाए तो कई तरह का प्रदूषण कम हो सकता है और यह हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। भारत में वेस्ट पॉल्यूशन का सबसे बड़ा स्रोत प्लास्टिक बन गया है। एक अनुमान के मुताबिक देश में हर साल करीब 14 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर कचरा फैल जाता है और वातावरण प्रदूषित होता है। देश में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, चाहे वह कैंडी हो या फिर किसी भी चीज की प्लास्टिक पैकिंग, लेकिन सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एकल उपयोग प्लास्टिक से बने उत्पादों पर बैन का उल्लंघन करने पर 1,00,000 रुपए तक फाइन लग सकता है या 5 साल की जेल भी हो सकती है। सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन की दिशा में जागरूकता पैदा करने के उपाय कर रही है। जागरूकता अभियान ने उद्यमियों और स्टार्टअप उद्योग, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों, विशेषज्ञों, नागरिक संगठनों, अनुसंधान और विकास तथा शैक्षणिक संस्थानों को एक साथ लाया है। मेरा ये मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से मनुष्यों के साथ साथ जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को भी काफी नुकसान है, अतः इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए जागरूकता, ठोस कार्यवाही और सार्वजनिक भागीदारी बेहद जरूरी है।
1: एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरे विषय पर अभी आपने सीमा कुमारी की ये वार्ता सुनी कार्यक्रम किस लय में। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 1:30 होने को हैं। समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं फिल्मी नगमे। फिल्म क्रोधी का ये नगमा सुनिए। आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: क्रोधी फिल्म में भी आपने आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों को सुना। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांती प्यारेलाल का संगीत। एक संदेश, उसके बाद सुनवाएंगे कुछ और गीत।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

लता मंगेशकर, कुमार शानू और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन में। रविंद्र रावल के बोल, राम लक्ष्मण का संगीत, और अब हेमलता और यशुदास को सुनिए। गीत लिया है फिल्म संपर्क से, योगेश की रचना है, रविंद्र जैन का संगीत।

यशोदास और हेमलता को भी आपने सुना फिल्म संपर्क में। योगेश की रचना थी, रविंद्र जैन का संगीत। और अब सोनू निगम और साथियों को सुनिए, फिल्म है मिस्टर वाइट मिस्टर ब्लैक। समीर के बोल, तौसीफ अख्तर का संगीत।

फिल्म में विवाह का ये गीत आपने सुना, उदित नारायण और श्रेय घोषाल की आवाज, गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय दिन के 2 बजने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय, अन्य न्यायाधीश, सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। यह सम्मेलन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ट और बिहार जुडिशियल एकेडमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में गिरफ्तार भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत यह कार्रवाई की है। मुमुक्षु कुमार चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अगला आदेश जारी होने तक उनका निलंबन प्रभावी रहेगा। पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोप में स्थानीय थाने में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 27 लोगों के खिलाफ नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपितों ने निर्माण कार्य रुकवाया और मौके पर मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट की। राज्य सरकार ने झारखंड से बिहार में प्रवेश करने वाले अवैध और ओवरलोडेड गिट्टी लदे वाहनों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों की सघन जांच करने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि ओवरलोडेड वाहनों से सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है और सरकारी राजस्व को भी नुकसान होता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आज से 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्याय

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से श्री यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने नेपाल की नागरिकता रखने वाली 10 महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया के तहत शपथ दिलाई। इन सभी महिलाओं का विवाह अररिया जिले में हुआ है और वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ अररिया में निवास कर रही हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। पूर्णिया के ठेंगरा घाट में सबसे अधिक 28.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले के सिवायपट्टी थाना क्षेत्र में आज तड़के अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यवसायी रोज की तरह डेरा चौक स्थित मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे, तभी हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना के बेउर में पिछले दिनों एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि भूमि विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया था। वैशाली जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ लाभुकों के लिए घर घर खाद्यान्न पहुंचाने की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने हाजीपुर सदर प्रखंड की इस्माइलपुर पंचायत के हरोली गांव से इस योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। बोधगया वाक़े महाबोधि सकाफती मरकज़ में आज से 3 नए मुजरमाना कानून के मौसर अमल दरामद के लिए 2 रोज़ा रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने किया। कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, सभी ज़िलों के सीनियर एसपी और एसपी समेत 200 से ज़्यादा नुमाइंदगान शामिल हो रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस बिहार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बीपार्ड व बिहार जुडिशियल एकेडमी के ज़रिए मुनक़द हो रही है। रियासती हुकूमत ने मशहूर टेंडर घोटाले में गिरफ्तार महकमा तामीरात इमारत के उस वक्त के जॉइंट सेक्रेटरी मुमुचू कुमार चौधरी को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया है। महकमा जनरल इंतजामिया ने बिहार सरकारी सेवक जाब्ता के तहत ये कार्रवाई की है। मुमुक्षु कुमार चौधरी फिलहाल अदालती हिरासत में हैं। अगले हुक्म तक उनकी मुअत्तली मुअसर रहेगी। मशरकी चंपारण के पिपरा कोठी में मुजवजा वाटर पार्क प्रोजेक्ट के तामीराती काम में खलल डालने के इल्ज़ाम में मकामी थाने में आरजेडी एमपी सुधाकर सिंह समेत 57 अफराद के खिलाफ इतला अव्वल दर्ज की गई है। 27 अफराद के खिलाफ नामजद और 30 नामालूम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन ने तामीराती काम में खलल डाला और मौके पर मौजूद अमलों के साथ मारपीट की। रियासती हुकूमत ने झारखंड से बिहार में दाखिल होने वाले गैर कानूनी और ओवरलोडेड गिट्टी लदी गाड़ियों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने सभी सरहदी ज़िलों के ज़िला मैजिस्ट्रेट्स को खत लिखकर ऐसी गाड़ियों की सख्त जांच करने और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। खत में कहा गया है कि ओवरलोडेड गाड़ियों से सड़क तहफ्फुज़ मुतासिर होता है और सरकारी रेवेन्यू को भी नुकसान होता है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कोऑपरेटिव वज़ीर रामकृपाल यादव से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने डॉक्टरों से उनकी सेहत से मुतल्लिक मालूमात हासिल की और उनकी जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। अररिया के ज़िला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन ने नेपाल की शहरियत रखने वाली 10 ख़वातीन को हिंदुस्तानी शहरियत की हुसूलियाबी के अमल के तहत हल्फ बर्दारी कराई। इन सभी औरतों की शादी अररिया ज़िले में हुई है। फ़िलहाल वो अपने ख़ानदान के साथ अररिया में मुकीम हैं। रियासत में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ने से बारिश की हलचल में कमी आई है। इसके सबब ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम पारा हरारत में भी इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के बमौजिब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के शमाली और जुनूबी हिस्सों में कुछ मकामात पर हल्की बारिश दर्ज की गई। पूर्णिया के ढेंगरा घाट में सबसे ज़्यादा 28.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम की कयास आरआई में कहा गया है कि आज रियासत के बेशतर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। मुजफ्फरपुर ज़िले के सिवाई पट्टी थाना हलका में आज सवेरे जराम पेशा अनासिर ने एक किराना दुकानदार को गोली मारकर हलाक कर दिया। दुकानदार मामूल के मुताबिक डेरा चौक वाके मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे, तभी हमला आवरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जराम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। पटना के बिहोर में पिछले दिनों एक नौजवान की हलाकत के मामले में पुलिस ने 4 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ज़मीनी तनाज़ा में हलाकत को अंजाम दिया गया। वैशाली ज़िले में कौमी अजनास तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत 80 बरस और उससे ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग मुस्तफ़ीज़ों के लिए घर घर अनाज पहुँचाने का नया निज़ाम शुरू हो गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट वर्षा सिंह ने हाजीपुर सदर ब्लॉक की इस्माइलपुर पंचायत से इस मनसूबे को शुरू किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 3522 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 18 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ssc.gov.in। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अप्रेंटिस के 550 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.bfsissc.com। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.sbi.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
2: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के समय 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित

33 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा।

0: बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांड में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का

0: कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम

0: की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: अच्छे
1: खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है।
0: वाह वाह बेटा,
1: सुबह की किरने आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी,
0: नमस्ते
1: जय हिंद जय हिंद ओ पिताजी,
0: जय हिंद।
1: नमस्ते नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बूट पॉलिश फिल्म में अभी आपने मन अड्डे को सुना। हर्ष जयपुरी की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म देख कबीरा रोया से, ये नगमा। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार मदन मोहन।
1: एक ट्रेंड क्लासिकल वोकल सिंगर हैं, वो हैं मन्ना डा। तो मन्ना डा का ये सॉन्ग जो है फिल्म देख कबीरा रोया के लिए, मैंने फर्स्ट टाइम जब मन्ना डा को सुना उसी गीत के थ्रू मैं उनके नज़दीक आया, उन्हें सुनने लगा।

एक कबीरा रोया फिल्म में भी आपने मन अडे को सुना, और अब मन अडे और साथियों को सुनिए। फिल्म है बरसात की रात, शायर की रचना है रोशन का संगीत।

0: बरसात की रात फिल्म में भी आपने मन्ना डे और साथियों को सुना। ऋषि के साथ फिल्म संगीत का महाराज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की यह सभा। हमारी अगली सभा शाम 4:30 पर आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहेगी,
5: मन चाहेगी, मन
4: चाहेगी। मन चाहे गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। ये हैं सदर नागपुर से कमल गोलचा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलचा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से। लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत काड़ेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायल का और मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

यह आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं। आप सबने हमें खत लिखा है, ये हैं काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंबाड़े, भारती रंबाड़े, हर्षेल रंबाड़े, वैष्णवी रंबाड़े, जानवी रंबाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं ये। इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का। और ये हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीर सागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की। गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। ये हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। ये खत हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, थोराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने। जिला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

यह अवस्थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गुलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गुलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस, बिमला, सतीश, अनेजा और उनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतला नगर दुर्ग से शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अरपा पैरी पार्वती राधा चंद्राकर का, और जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दुगाना।

इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मधमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था।

0: चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारिणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
1: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है, वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें।
0: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा, तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा।
2: मंत्री जी, पढ़िए पत्र।
3: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
2: ओह, हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है। ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीरसेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
0: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था। और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ ही लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राजप्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी। उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: अति सुंदर।
1: महाराज देखा?
0: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: देखिए महाराज, इसने तो इस गीत के बहाने अपने आप को आप पर न्योछावर कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि नाथ विवश हो पर अपनी ही समझो।
2: मालविका अब तू जा।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर देखिए।
4: मैं क्या पूछूं जी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
1: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
2: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
4: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
1: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
3: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
2: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
3: दे दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
2: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अभी से अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
5: जो आज्ञा।
3: लीजिए महाराज, जहां तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
1: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
3: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि वैद्य ही अपने पास ही औषधि भी दे।
2: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
1: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
2: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपकी शिष्या का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्य पुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
0: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अति

0: दी है।
1: मित्र सच पूछो तो विधाता ने सहस सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया। मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवाई की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
0: महाराज कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: हमें घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रनिवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम सोचा कोई उपाय?
0: उपाय उपाय हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
1: हम उसे मालामाल कर देंगे।
0: बकुला वलिका समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ
2: आइए गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ
3: अरे मालविका तुम आ गई।
4: दासी सेवा में उपस्थित है देवी। पांव में क्या बहुत कष्ट है?
3: इस दुष्ट गौतम के नटखट बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
4: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
3: तो तुम बकुला वालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
4: जो आज्ञा।
3: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
0: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। तनिक देखिए तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
1: हाँ हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंत ऋत हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा सह नहीं पा रहे हो क्या? ये प्रेम की पीड़ा, हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रोग। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं उतने ही कठोर होते हैं।
0: महाराज तनिक धीरे से काम लीजिए, आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
1: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा, आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा।
0: चलिए झूला गृह की ओर।
1: झूला गृह की ओर?
0: हाँ हाँ, अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था। रानी इरावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
1: हाँ मान तो ली थी, परंतु
0: कैसी अचरज की बात है कि
1: क्या हुआ?
0: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है?
1: क्या

0: क्या मालिका आ रही है?
1: और क्या?
0: तो सब जो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
1: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
0: ये सीधे साधे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं। गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हें गिने फूल बचे रह गए हों।
1: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज।
0: मित्रों को ऐसा ही सुझा करता है। अरे, मालिका अपने आप कुछ कह रही है। आओ मित्र, हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
1: लेकिन महाराज, अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
0: मित्र, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
2: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ते तू मिलने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है और ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। पूछे यूं सता कर तुझे क्या मिल रहा है?
0: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र। इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं। अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है?
1: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायका बकुला वल्का उसके पास पहुंच गई।
0: अरे, ये बकुला वल्का साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
1: अरे, आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
0: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
1: और नहीं तो क्या आपके लिए?

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूँ। लो सखी, हृदय ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
1: वाह तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
0: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। हाँ
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
3: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप ही अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
2: मन चाह भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
0: अरे निपुणिका, आर्य पुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
4: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे।

0: ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे। आइए उन्हें ढूंढे।
1: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
0: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेंगुलता मंडप में बैठे।
1: अच्छा चल।
2: अरे ये क्या
0: स्वामिनी?
1: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
0: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
1: अरे क्या कह रही है
0: देवी? तनिक उधर देखिए, उधर वहां अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
1: मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
0: मैं समझती हूँ कि पाँव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूप पर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
1: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
0: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
1: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए। कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साथ सिंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
3: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
4: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
3: सच सच कह दूं ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
4: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
3: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ
4: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
3: आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर तो
4: भी।
3: मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
4: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
3: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
4: मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए।
3: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
4: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
3: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। हाँ
4: क्या ये सब अपने मन से ही घटती जा रही हो?
3: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
4: सच? पर सखी उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
3: अरे पगली, भौरों के डर से कोई कानों में आम्रमंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो। अरे क्या सोच रही हो?
4: सखी यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
3: अरे मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
5: वाह बकुलावली का वाह। मित्र बकुलावलिका ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
6: महाराज उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
5: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं ये अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा।

0: मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
1: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
2: आई गौतम, ए महाराज भी
1: क्यों रही बकुला वालिका? सब कुछ जानते हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
2: आइए गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
0: अच्छा, तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़कर उठो।
1: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
0: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसलय कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
2: महारानी को जाकर सूचना दी कि उनके आज्ञा अनुसार हमने।
3: अरे, पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
0: भद्री, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
4: मालविका अग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग

0: में लिख दिए।
1: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और
0: हाँ
1: हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी, वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें
0: जी
1: भी सलमान भाई थे,
0: हाँ हाँ
1: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहाँ फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
0: बिल्कुल
1: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ
0: हाँ
1: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है, क्योंकि
0: जी।
1: दोनों गाने वही थे।
0: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की
1: नहीं
0: थी कि
1: नहीं
0: चुनरिया पर ही आपको
1: नहीं
0: गीत
1: नहीं
0: लिखना।
1: मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई, हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
0: आपस का।
1: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5,000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5,000 चुनरिया तो नहीं है। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग, तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊँगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊँगा, लेकिन एक बात मैं बताऊँ उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो जगह ही रहता था मतलब, और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे, सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के? हाँ। ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं, चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमे के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहाँ तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूँ। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है। तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को

0: उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं, उसमें
1: हाँ
0: क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया। और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना
1: मानना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी, मैं गीतकार था। और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया। और एक दिन मुझे फ़ोन करके एक फिल्म के लिए बोले, अरे तेरा एक कागज़ उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंदर जैन और
1: जी
0: कहाँ सुधाकर शर्मा,
1: जी
0: क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: सही
0: देखिए
1: बात है।
0: रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं
1: जी
0: सकते।
1: जी जी
0: तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा।
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
1: हाँ,
0: हैं,
1: भूख
0: भूखे
1: लगी
0: प्यास लगी
1: होगी
0: होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन
1: बहुत।
0: बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब।
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना,
1: जी
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ, और मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला, कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा जी,
0: मैं बेचैन हो गया। हमने
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया,
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ मैं। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए, तो एडिटर मुझे दिखाने लगा। तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए।
1: जी
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है,
1: अच्छा, धरती की
0: तो
1: हलचल।
0: हलचल, और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है, ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का, और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार
0: अब
1: विजु
0: पहली
1: शाह।
0: बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था, तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लकी। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलकी कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना,
1: हाँ
0: दावा नहीं कर सकते अपन।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मेरा ठीक है,
1: ओहो
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना DAV जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ
0: मैंने उनके घर फोन लगाया, मिसेज को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये
1: ओ
0: मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और
1: गया।
0: मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और
0: जी
1: कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये
0: जी
1: बातें, ना जानने को
0: जी
1: मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे। आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके
0: जी
1: बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाकिनी जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई

0: एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना, गा गा के बनाते हैं। और ट्यून जो है ना, ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह
2: NIT Raipur, an institute of national importance under the Ministry of Education, Government of India, has invited up.
0: कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो।
1: बर्दाश्त
0: फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर, एक वर्ड है, बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे?
1: बिल्कुल
0: बोले मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के कितने हैं?
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने
1: एकदम
0: तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया, और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर गजब गाना क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। प्रस्तुत है युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी में, जहां हर बात जुड़ी है आपसे और आपके सपनों से और आपके विचारों से। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रिया।
1: हेलो दोस्तों, और मैं हूँ अंजलि। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ नई जानकारी, कुछ प्रेरक पंक्ति और साथ ही शानदार फिल्म संगीत। पर उससे पहले, इतनी गर्मी में आप अपना खास ख्याल तो रख रहे हैं ना? दोस्तों, इतनी गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखना ना भूले।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि युवानी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की आवाज है। यहाँ हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो हमारे समाज, हमारे भविष्य और खासकर युवाओं के जीवन से जुड़े होते हैं।
1: तो दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम होगा बेहद ही खास। आज हम बात करने वाले हैं महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्हें भारत के महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और युवा प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है। उनके महासमाधि से जुड़े कुछ प्रसंगों की भी बात होगी।
0: इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ ही आज है 4 जून और आज है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, तो हम जानेंगे इसके महत्व और इसकी भावनाओं के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। और वैसे अंजलि, आज तो दिन है शनिवार, तो दोस्तों हर शनिवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहद खास सेगमेंट, यानी कि स्टार्टअप सैटरडे। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे स्टार्टअप से जुड़ी प्रेरणादायक जानकारी की, जिसे युवा उद्यमिता

0: और नवाचार के लिए प्रेरणा मिले।
1: और प्रिया, कार्यक्रम में आगे होंगी जॉब अपडेट्स, और जिसमें हम श्रोताओं को विभिन्न कार्यालयों और संस्थाओं में निकाली गई नई भर्तियों और रोजगार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे।
0: बिल्कुल अंजलि, और साथ ही अपने श्रोताओं को कुछ बेहद रोचक तथ्यों से भी रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, अगले 1 घंटे तक आप जुड़े रहें हमारे साथ और लेते रहिए ज्ञान, प्रेरणा और संगीत का आनंद। तो बिना किसी देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गोलमाल 3 से शान और अनुष्का की मनचंदा की आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक।

0: गाने से गाने के बाद अब बारी है हमारे उस खास सेगमेंट की जिसका इंतजार आप सबको बहुत बेसब्री से रहता है, यानी हमारे प्रेरक पंक्ति की। और दोस्तों, आज का ये सेगमेंट मेरे दिल के तो बेहद करीब है, क्योंकि आज हम जिनके विचारों की बात करने जा रहे हैं वो है हम जैसे करोड़ों युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत।
1: बिल्कुल अंजलि, मैं तो समझ गई आप किसके बात कर रही हैं। आज है स्वामी विवेकानंद की महासमाधि का दिन, तो उनसे बेहतर मोटिवेशन मुझे लगता है और कोई कोई नहीं हो सकता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। स्वामी जी की बातें सीधे दिल पर असर करती हैं। उनका एक विचार जिसने मेरी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दिया और जो मुझे हर मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है वो है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कितनी सिंपल बात है, पर इसमें कितनी बड़ी ताकत छुपी है।
1: बिल्कुल अंजलि, और ये लाइन बोलकर जैसे स्टूडियो का माहौल ही आपने बदल दिया, और ये बात सीधे दिल तक हमें और हमारे युवाओं को छू गई होगी कि ये पंक्ति बेहद ही मोटिवेशन है और हमें थक कर बैठना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए चाहे मुसीबत जो भी आए। लाइफ में कहा जाता है ना कि संघर्ष तो जीवन का सबसे बड़ा चुनौती है, और जो युवा उसे घबराते नहीं और आगे बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उन्हें जरूर इस पंक्ति से मोटिवेशन मिला होगा।
0: बिल्कुल, और हमारे जितने भी दोस्त इस वक्त रेडियो ऑन करके हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी-कभी ऐसा फेज आता है जब लगता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही। चाहे आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी में दिन रात एक कर रहे हो या करियर के किसी मोड़ पर कंफ्यूज हो, बस ये बात याद रखिएगा कि रुकना हमारा ऑप्शन नहीं है। आपकी मेहनत का हर एक कतरा एक दिन जरूर रंग लाएगा, बस खुद पर भरोसा रखिए।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने अंजलि। रुकना हमारा समस्याओं के समाधान नहीं है, और हमें उससे लड़ना और उस लक्ष्य तक पहुंचना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो बिल्कुल अपने आप पे दोस्तों भरोसा रखिए, और याद रखिए एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।
0: तो दोस्तों, इस जोश को कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि अभी तो सफर शुरू हुआ है। आगे हमारे पास स्वामी जी के जीवन से जुड़ी और भी बहुत खास बातें हैं, लेकिन अभी रुकना नहीं है, बल्कि इस खूबसूरत संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर, जिसे आवाज दी है अमाल मलिक ने।

0: इस प्यारे से गाने के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद शो युवानी में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रिया।
1: और मैं हूं अंजलि। दोस्तों, आज 4 जुलाई है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा दिन है जो हमें गहराई से सोचने और एक महान आत्मा को नमन करने की याद दिलाता है। आज ही के दिन यानी 4 जुलाई 1902 को बेलोर मठ में स्वामी विवेकानंद जी ने महासमाधि ली थी। उन्होंने मात्र 39 साल की छोटी उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन इन कम सालों में भी जो वैचारिक विरासत वो छोड़ गए, वो सदियों तक हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी।
0: बिल्कुल अंजलि, और जब हम स्वामी जी को याद करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में उनकी वो तेजस्वी छवि और ज्ञान का वो समंदर तैरने लगता है। और उनके बारे में दोस्तों जितना जानो जितना सोचो उतना कम लगता है, लेकिन अंजलि उनकी शुरुआत से जुड़ी बातें भी बड़ी दिलचस्प है ना।
1: हाँ, बहुत से लोग उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते थे, लेकिन उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें प्यार से लोग नरेन बुलाते थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, और उन्हें उनके इस जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं।
0: अरे वाह, यह तो वाकई युवाओं को पता होना चाहिए। और यानी जानकार जनवरी की वो कड़कड़ाते ठंड में जो ऊर्जा का स्रोत उन्होंने उनसे मिला वो पूरे दुनिया को रोशन किया। और वैसे दोस्तों कहा जाता है कि जब इंसान जीवन में कुछ अच्छा करता है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में उनके माता पिता की अहम भूमिका रही होगी, और सबसे बड़ी भूमिका माना जाता है कि गुरु का महान बहुत अहम भूमिका होती है। तो अंजलि, हम अपनी श्रोताओं को बताएंगे कि उनके जीवन में उनके गुरु का क्या महत्व रहा।
1: गुरु के बिना तो

0: ज्ञान संभव ही नहीं है प्रिया। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने से बाद नरेंद्रनाथ के जीवन की दिशा ही बदल गई थी। उन्हीं के सीख प्रेरणा आगे चलकर नरेन को रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में करने पर मजबूर कर देती है, जो आज भी निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है।
1: सच में अंजलि, रामकृष्ण मिशन के बारे में तो सबने सुना होगा दोस्तों, आप सब भी जानते होंगे। और यह जानना कितना अद्भुत है कि इसकी नींव हमारे स्वामी जी ने अपने गुरु के सम्मान और उनके विचारों को फैलाने के लिए रखी थी। जब भी स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है तो शिकागो की वो ऐतिहासिक स्पीच खुद ब खुद हमारे दिमाग में आ जाता है और हमें याद आती है वो।
0: बिल्कुल प्रिया, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली। ईयर 1893 सितंबर का महीना था, अमेरिका का शहर शिकागो शहर। वहाँ जब विश्व धर्म संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स का आयोजन हुआ, तो भारत की तरफ से स्वामी जी वहाँ पहुँचे थे। और जैसे ही उन्होंने मंच पर खड़े होकर अपने भाषण की शुरुआत की, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई मिनटों तक तालियां बजती रहीं।
1: सच में अंजलि, यह सुनते ही आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दौर में जब पश्चिम के लोग भारत को बहुत अलग नजरिए से देखते थे, स्वामी जी ने अपनी पहली ही लाइन से, पहली पंक्ति से पूरी दुनिया को अपना परिवार सा बना लिया। वसुधैव कुटुंबकम, इसका सबसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है।
0: बिल्कुल, उन्होंने पूरी दुनिया को वेदांत और योग के दर्शन से रूबरू कराया। उन्होंने बताया कि धर्म का मतलब आपस में लड़ना नहीं बल्कि मानवता की सेवा करना है। उनके ज्ञान और प्रभाव को देखते हुए खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने उनको सुझाव दिया कि उनका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रख दिया जाए, जिसके बाद ही पूरी दुनिया उनको इसी नाम से जानने लगी।
1: वाह, यह तो बात मुझे भी आज पहली बार पता चली अंजलि कि उन्हें स्वामी मतलब विवेकानंद नाम कैसे मिला। उनकी बातें, उनकी यात्राएं, सब कुछ कितना इंस्पायरिंग है ना।
0: इंस्पिरेशन का तो वो दूसरा नाम है प्रिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1894 में की थी, ताकि भारतीय दर्शन सात समंदर पार भी लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। उनकी लिखी किताबें जैसे राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग आज भी हर उस इंसान के लिए एक गाइड की तरह है जो खुद को या इस ब्रह्मांड को समझना चाहता है।
1: वाकई अंजलि, और आज उनकी महासमाधि के दिन उनके जीवन के इस सुनहरे पन्नों को पलटना दिल को एक अजीब सा सुकून और दिमाग को बहुत सारी जानकारी दे गई। बातों बातों में मुझे तो उनके बारे में इतनी सारी नई बातें सीखने को मिली, और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको भी कुछ ना कुछ नया जानने को आज मिला होगा।
0: यही तो खूबसूरती है युवाणी की प्रिया, बातें भी हो गई, दिल की मुलाकात भी हो गई और साथ ही कुछ सीखने को भी मिल गया जो हमेशा हमारे काम आए। तो दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, और भी बातें होंगी आगे, पर उससे पहले सुनते हैं निर्जा फिल्म से ये गाना।

0: दोस्तों, हम चलेंगे आज के अगले विषय की ओर और हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की, जो हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है।
1: बिल्कुल प्रिया, वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को सहकारिता की भावना से जोड़ना है, सहयोग व आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उन्हें ये बताना है कि मिलजुल कर काम करने से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत बनाया जा सकता है।
0: तो श्रोताओं, सहकारिता का सरल अर्थ यह है कि एक दूसरे से सहयोग में आगे बढ़ना, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना। और जब लोगों को अपनी आवश्यकताओं और हितों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से एक संगठन जब लोग बनाते हैं और उसका लोकतांत्रिक ढंग से संचालन करते हैं, सभी सदस्यों के बीच समानता के आधार पर सहयोग करते हैं, तो उसे ही सहकारी संस्था कहा जाता है।
1: बिल्कुल प्रिया, और यही कारण है कि दुनिया भर में लाखों सहकारी संस्थाएं कृषि, डेयरी, बैंकिंग, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और उपभोक्ता सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। दोस्तों, इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि अपने सदस्यों और समाज का समग्र विकास करना होता है।
0: दोस्तों, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुरुआत वर्ष 1923 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन यानी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा की गई थी। बाद में वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को आधिकारिक मान्यता दी। तब से संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय

0: सहकारी संगठन मिलकर हर वर्ष इसे वैश्विक स्तर पर मनाते हैं।
1: सहकारिता का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि एक सदस्य एक मत। इसका मतलब ये है कि संस्थान में प्रत्येक सदस्य का अधिकार मिलना बहुत जरूरी है, चाहे उसने कितनी भी पूंजी लगाई हो। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था सहकारी संस्थाओं को अन्य व्यवसाय संस्थाओं से थोड़ा अलग बनाती है।
0: बिल्कुल अंजलि। और भारत में सहकारिता आंदोलन का एक लंबा और प्रेरणादायक इतिहास रहा है। जी हाँ दोस्तों, किसानों को उचित मूल्य दिलाने, सस्ती ऋण सुविधा उपलब्ध कराने, डेयरी उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जैसे कार्यों में सहकारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
1: और प्रिया, विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में सहकारिता मॉडल ने तो देश को नई पहचान दिलाई। लाखों दुग्ध उत्पादक किसान सहकारी समितियों से जुड़कर अपनी आय बढ़ाने में सफल हुए हैं। इसी तरह से अनेक सहकारी बैंक, कृषि ऋण समितियां और स्वयं सहायता समूह भी लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है।
0: वैसे अंजलि, आज जब दुनिया सतत विकास, सामाजिक समानता और समावेशी अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, तब सहकारी संस्थाएं इन लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावी भूमिका निभा रही है। ये रोजगार के अवसर पैदा करती है और महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाती है तथा स्थानीय स्तर पर विकास को गति देती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने प्रिया, सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक विकास और साझेदारी की भावना भी है। जब लोग एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते हैं, तब विकास का लाभ समाज के सभी व्यक्ति तक पहुंचने में संभव होता है।
0: बिल्कुल। और इसीलिए दोस्तों, आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सहयोग, पारदर्शिता, ईमानदारी और सामूहिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे। इतना ही नहीं, जब समाज साथ चलता है तभी, कहा जाता है कि जब समाज साथ चलता है तभी वास्तविक और अस्थायी विकास संभव होता है।
1: तो आइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर हम सभी सहयोग की इस भावना को और मजबूत करें और ऐसे समाज का निर्माण करें जो हमारे योगदान का एक प्रचारक हो, जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले।
0: तो अंजलि, इसी संदेश के साथ क्यों न हम अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: हाँ बिल्कुल प्रिया, तो चलिए दोस्तों, हम सुनवाते हैं आपको थ्री इडियट फिल्म से सूरज जगन और शर्मन जोशी की आवाज में ये गाना।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना और मैं हूं आपके साथ अंजलि। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शनिवार का दिन हमारे इस कार्यक्रम के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि अब बारी है हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट यानी स्टार्टअप सैटरडे की। आज हमारा ये सेगमेंट उन सभी युवाओं के लिए बहुत खास होने वाला है जो लीक से हटकर कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, और जब बात स्टार्टअप की हो तो नए आइडियाज और कुछ नए तूफानी करने का जोश तो अपने आप आ ही जाता है। तो वैसे हमारे साथ स्टूडियो में कौन खास मेहमान जुड़े हैं अंजलि?
0: प्रिया, गर्मियों के मौसम में अगर ठंडी ठंडी मलाईदार कुल्फी मिल जाए तो क्या ही बात है। और आज हमारे स्टार्टअप सैटरडे में जुड़ रहे हैं एक बहुत ही इनोवेटिव स्टार्टअप कुल्फिया के फाउंडर अनुज शंकर जी। इन्होंने कुल्फी के जो ट्रेडिशनल टेस्ट है ना प्रिया, उनको एक नया और मॉडर्न अंदाज में लोगों के सामने पेश किया है।
1: क्या बात है, कुल्फिया नाम सुनते ही जैसे मन में लालच आ गया कुल्फी खाने का। तो नाम सुनते मुंह में जो पानी आता है ना, बड़े मजेदार और यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर ये हमारे साथ आ रहे हैं कुल्फिया के फाउंडर अनुशंकर, जिनसे बात करके इस सफर को जानना हमारे लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है।
0: एकदम सही कहा आपने प्रिया। और तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं इस इंटरव्यू की ओर और जानते हैं कि कैसे एक छोटे से देसी आइडिया के साथ उन्होंने एक इतना बड़ा ब्रांड बना लिया। स्वागत है आपका स्टार्टअप सैटरडे में।
2: धन्यवाद मैडम, नमस्कार सबको।
0: सबसे पहले आप अपने बारे में और स्टार्टअप के बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, मेरा नाम अनुप शंकर है। बेसिकली हम लोग कुल्फी बनाते हैं मोर देन 10 फ्लेवर्स में, 10 फ्लेवर से अधिक में हम लोग ऑथेंटिक कुल्फी बनाते हैं, जिसको ओरिजिनल कुल्फी कहते हैं, जो प्योर दूध का बना होता है।
0: जी
2: ठीक है। और एक्चुअली ये कहानी स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन के बाद। मैं पुणे में करीबन 18-19 साल रहा हूँ। 2002 से लेकर 2020-21 तक, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था, मैं पुणे में ही था। मेरी पढ़ाई वहीं हुई, मेरी नौकरी वहीं हुई। फिर जब शरीर ने साथ नहीं दिया, मैंने बिजनेस भी वहीं किया। लेकिन जस्ट लॉकडाउन के बाद हालात ऐसे वहां हो गए थे कि जैसे ही फ्लाइट स्टार्ट हुआ, मैं पूरी फैमिली के साथ वापस बिहार आया, वापस आ गया मैं यहाँ पे। लेकिन वापस जाने के लिए वापस आया था, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर से वापस अपने काम पे वापस जाऊंगा, सब करूंगा। लेकिन लॉकडाउन इतना लंबा खींच गया, करीब करीब 1 साल 1.5 साल तक खींच गया, कि सब कुछ फिर आउट ऑफ हैंड होने लगा था। राइट
0: जी।
2: तो अब जितनी सेविंग्स थी वो मेरी खत्म होने लगी थी। बिजनेस तो जो वहां था लॉकडाउन के कारण सब कुछ डूब ही गया था, तो जो सेविंग्स खत्म होने लगी थी, मुझे अब कुछ तो करना था। तो अगर कहें तो, अगर लोग पूछते हैं कि आपकी प्रेरणा क्या थी, तो प्रेरणा कुछ नहीं था, मुझे अपनी जिंदगी चलानी थी। मुझे बिहार में फिर से सेटल होने के लिए एक बहाना चाहिए था कि अब कुछ तो ऐसा करूं कि मेरी फैमिली को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को लगे नहीं पापा ने

0: सही किया बिहार में सेटल होके, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अलग लाइफ देखी थी, लग्जरियस लाइफ देखी थी, सब कुछ बढ़िया था, बड़े शहर में रह रहे थे। तो फिर मुझे यहाँ कुछ करना था, सर्विस सेक्टर में आना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो टीम मैं बना नहीं पाता यहाँ पे, राइट। तो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो कुल्फी मैं पहले से जानता था, क्योंकि पुणे में एक छोटी सी कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट था,
1: अच्छा,
0: कुल्फी की कंपनी में। तो वहाँ पे मैं अक्सर उस छोटी सी फैक्ट्री भी जाया करता था, देखा करता था कि मतलब कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, मुनाफे और मैंने घाटा मुनाफा क्या हो सकता है, उसका कैलकुलेशन था मेरे पास, राइट।
1: आपके पास एक आउटलाइन पहले से एक था आपके दिमाग में किसी कोने में?
0: नहीं नहीं नहीं, हाँ एक कोने में जरूर था, लेकिन वो प्लान में कभी नहीं था कि मुझे मैं अपना काम चालू शुरू करूंगा। वो प्लान में कभी मैंने बस इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट से मुनाफा कमा के मैं निकल भी गया था वहां से, राइट। क्योंकि प्रोडक्शन में आने का या सेल्स में आने का मेरा कभी कोई प्लान नहीं रहा था, मैं हमेशा सर्विस सेक्टर में ही रहा। और एक छोटा सा बिजनेस था पुणे में, वो चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब बिहार में क्या कर सकते थे वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे लिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो मैं मुझे आता है, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन देखा हुआ था, जिसके मुनाफा और घाटा मैं जो समझ सकता हूँ, वही बिजनेस क्यों ना करूँ। क्योंकि यहाँ पे कुल्फी का, मैं कुल्फी लवर हूँ खुद भी,
1: अच्छा।
0: तो जब भी मैं बाहर अगर कुल्फी खाने के लिए जा रहा था, तो मुझे या तो किसी ब्रांड का कुल्फी, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कुल्फी नहीं है, कहना गलत होगा, लेकिन जो ओरिजिनल कुल्फी होता है वो मुझे कहीं मिलता नहीं था यहाँ पे। तो उस कंसेप्ट से थोड़ा सा अलग होकर ऑथेंटिक कुल्फी लोगों को मिल सके, इसलिए मैंने कुल्फिया मतलब कुल्फी का एक फैक्ट्री यहाँ डालकर इस बिजनेस को स्टार्ट करने का हमने फैसला किया।
1: एक बात बताइए, ये जो नाम है ये काफी अनोखा नाम है, इसके पीछे की क्या कहानी है?
0: ये एक्चुअली ये क्या होता है, कंपनी नेम कुछ और रहता है और ब्रांड नेम कुछ और होता है। कुल्फी को ही नहीं लाना, फ्यूचर में बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो अदर, जो ये फ्रोजन प्रोडक्ट से अलग भी हो सकते हैं, हो सकता है सत्तू हो सकता है कुछ भी, मतलब अलग। तो वो एक ब्रांड नेम, अब कुल्फी के लिए मुझे एक ब्रांड नेम देना था, राइट। इस चीज के लिए करीब करीब कई दिनों तक माथापच्ची हुई, नहीं मिल रहा था, बिकॉज जो नाम मैं सोचता था वो किसी न किसी शॉप का नाम होता था या किसी प्रोडक्ट का, किसी और कंपनी का नाम होता था, तो मिलता नहीं था। और वो फीलिंग नहीं आती थी, इंग्लिश नाम सोचा तो फिर बिहार वाली फीलिंग नहीं आ रही थी,
1: अच्छा,
0: राइट, ठीक है, राइट। तो ये ऐसे आया कि मैं कहीं भी जाता था तो दो चार पांच कुल्फी, अक्सर मेरी आदत बन गई थी जब तक फैक्ट्री नहीं डाला था, दो चार पांच कुल्फी मैं टेस्ट हमेशा करता था और घर लेकर आया था कि किसका क्या क्वालिटी है क्या नहीं, ताकि मैं मार्केट को समझ सकूं।
1: अच्छा।
0: मेरी वाइफ जो है वो मगही बोलती है, वो पटना
1: अच्छा,
0: की लोकल है।
1: अच्छा,
0: मैं भोजपुरी बोलता हूँ, बेसिकली मैं मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ। तो एक दिन मेरी वाइफ ने किसी से कहा कि अरे जो मगही में ही, उन्होंने कहा कि अरे देते हैं तो फ्रिज में से वो कुल्फिया ले लाइए, ये मगही में बोलते हैं।
1: हाँ।
0: तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि लोकल लैंग्वेज में हम लोग अक्सर कुल्फिया बोलते हैं, कि बाजार जाते हैं तो चार कुल्फिया ले लाइए, चाहे कुल्फिया ले लाइए। तो कहानी यहाँ से थी, फिर वहां से मैंने इस वर्ड को पिक किया, हमारे लैंग्वेज में भोजपुरी में भी आता है, मगही में भी आता है, वहां से इस वर्ड को हमने पिक किया। इसका प्लूरल जो होता है ना, बहुवचन से कोई लेना देना नहीं है बातों में, कि तो वहां से हमने इसको उठाया था। और ठीक है, मतलब हिट है नाम, लोगों की जबान पर चढ़ जाता है।
1: अच्छा अनुप जी, स्टार्टअप की शुरुआत में तो आपको बहुत सारी चुनौतियां देखनी पड़ी होंगी, उसमें से कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसने आपको ज्यादा परेशान किया और आपने उसको कैसे पार किया?
0: जब शुरुआत हुई थी तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस दिन हमने फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, उसके अगले दिन ही बंद होने के कगार पे आ गया था।
1: अरे
0: बेसिकली इसके लिए मैंने जो कारीगर बोलते हैं ना, मतलब कारीगर जो मेन प्रोडक्शन देखता है, जिसको सारे काम आते हैं, राइट। तो वो पुणे से था, वो भी लॉकडाउन के बाद उसकी भी नौकरी चली गई थी, जो भी था वो बोला कि भैया ऐसा मैं आऊंगा, फैमिली में शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं पूरा आपका कारखाना संभाल कर दूंगा,
1: अच्छा,
0: मतलब सारा प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ देखूंगा। उसने मशीनरी बताई कि हाँ यहाँ से मशीनरी लो, हमारी फैक्ट्री में ये मशीनरी यूज होता है, कि मैं मशीनरी मैं भी जानता हूँ। तो वो सारी मशीनरी मैंने लेकर, प्रॉपर्टी पूरी लेकर, वायरिंग कर, सारे मैंने पूरा फैक्ट्री सेटअप कर लिया, उस बंदे ने आने से मना कर दिया। और जब उस बंदे ने आने से मना कर दिया तो दो दिन तक मैं इसमें था कि अब मैं करूंगा क्या, बिकॉज बिहार में किसी को भी वो फ्लेवर बनाने आता ही नहीं है।
1: अच्छा।
0: कोई कारीगर बिहार में था ही नहीं, अगर जो थे भी तो बिहार के बाहर काम कर रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी फैक्ट्री तो होनी चाहिए ना, राइट। तो वो सबसे बड़ा हर्डल आया था, जिसमें दो तीन दिन तक हमें समझ में ही नहीं आया था कि अब करना क्या है। इवन मैंने मशीनरी जहाँ से आया था उनसे बात भी करनी शुरू कर दी थी कि वापस कर सकते हैं क्या, फ्रस्ट्रेशन में,
1: अच्छा,
0: अब क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद

0: फिर से एक जोश आया कि नहीं ठीक है इसको करेंगे तो करेंगे। इसमें हमारे एक अंकल जो जिनके साथ मैंने पार्टनरशिप किया था, पार्टनरशिप नहीं किया, जहाँ जिनकी फैक्ट्री में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, उन्होंने बहुत मदद करी। उनको मैंने फोन किया कि ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आ गया हूँ। तो वो ऑलरेडी उस बंदे को जानते थे, उसको फोन किया तू गया क्यों नहीं, तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं पुणे में, फिर से मुझे काम मिल गया है।
1: अच्छा,
0: आपको कौन वापस बिहार जाएगा, फिर तो वही जिंदगी जीने, ऐसा ही उसका लैंग्वेज था। राइट, तो उन्होंने कहा कि बेटा करना चाहता है, कहेंगे अंकल करूंगा। तो तेरे यहाँ सबसे अच्छा कुक कौन है, कहेंगे छोड़ो कुक को, करना क्या है बताओ। तो मैं फोन पे और वीडियो कॉल पे तुझे माल बनाना सिखाऊंगा कैसे बनता है।
1: अच्छा,
0: तो मैंने उनसे कहा कि अंकल मैं ही सीखूंगा, क्योंकि एक बात तो समझ में आ गई कि जो काम अगर नहीं आता है ना उस काम में हाथ मत डालो। और अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा प्रोडक्शन आपको आना चाहिए, तभी जाकर आप सक्सेसफुल होंगे। तो उन्होंने करीब करीब एक हफ्ते तक सारा प्रोडक्शन लाइन मैं सेटअप करके दिया, और आज भी अपनी फैक्ट्री का सबसे अच्छा जो कारीगर मैं ही हूँ, टेस्टर मैं ही हूँ, टेस्टर मैं ही हूँ। अगर टेस्ट जो प्रोडक्शन में जाता है तो पहला टेस्ट करते हैं हम लोग, मतलब वो टेस्ट आया है या नहीं आया है, वो टेस्टिंग का प्रोसेस रहता है, वो मेरे बिना ओके किए आगे नहीं बढ़ता।
1: तो जब आप लोगों ने पहली बार अपनी कुल्फी अपने ग्राहकों को चखाई तो उनका रिएक्शन कैसा था?
0: रिएक्शन की बात करें, सबसे पहले लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उन्हें किसी रबड़ी में डुबा कर देंगे।
1: अच्छा,
0: जो रहता है ना, ऐसा आया था कि आप इसको डुबाते नहीं है, कि भाई कुल्फी जो रोड साइड वेंडर्स बेचते हैं वो करते हैं, लेकिन जो दुकानों में देना है, जो इजिली आपको अवेलेबल हम लोग करा सकें, उसमें ये प्रोसेस बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, और उस समय के बाद जब शुरुआत हुआ, एक आध महीने तक लोगों की जबान में चढ़ने में टाइम लगा, और फिर उसके बाद तो लोग फैक्ट्री पर जाकर आकर लेने लगे हैं, शादी पार्टी के ऑर्डर्स मिलने लगे हैं, बहुत बहुत कुछ होने लगा। इसमें एक हर्डल ये भी आया था कि शुरुआत में हमने इतना कुछ बड़ा करने के बारे में नहीं सोचा था। शुरुआत में मैंने बताया ना कि मुझे अपनी जिंदगी चलानी थी, कि कैसे भी बिहार मुझे सेटल होना है, एक बिजनेस रहेगा तो सब कुछ जिंदगी चलेगी। तो हमारे कार्ड्स में हमने लिए थे, मेरे और मेरे पार्टनर ने, एक्चुअली मेरे पार्टनर ने ही बहुत ज्यादा सपोर्ट किया सब कुछ यहाँ पे बिहार में सेटल होने में, बिजनेस को सेटल होने में। तो हमने कार्ड लिए थे, और कार्ड बहुत बड़ा फ्लॉप था, बिकॉज हमारा नाम मार्केट में नहीं था, कोई हमें जानता नहीं था। फिर कार्ड लोग जब अदर ब्रांड्स के आइसक्रीम वगैरह अवेलेबल है मार्केट में, जो बड़े बड़े नाम है, तो उनकी आइसक्रीम को प्रेफर करते थे, हमारा मार्केट में जा रहा है, जो एक बार खा ले रहा था वो दोबारा जरूर आ रहा था, लेकिन कस्टमर्स को लाने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, आज भी कार्ड का बिजनेस हम लोग बंद कर चुके हैं, कार्ड से हमारे प्रोडक्ट्स नहीं जाते हैं, और कार्ड को हमने बिल्कुल अपने फैक्ट्री के बाहर लगा के रखा है ये देखने के लिए कि हाँ भाई ये एक फेलियर है, जिसको फिर से हमें अपना नाम बड़ा करके फिर से ये मार्केट में आने वाला है।
1: वाह, अच्छा, हमारे श्रोताओं में कई युवा उद्यमी भी हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: देखिए, सबसे पहले आपके युवा उद्यमी भी हैं और बहुत सारे लोग बाहर भी काम कर रहे हैं। राइट, मतलब बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। मैं उस चीज से पहले बता रहा हूँ कि देखिए, जो बच्चे, जो युवा अभी जो बाहर जाकर कमा रहे हैं ना, इसको कमाना ही कहते हैं, यहाँ पे कमाने बाहर जा रहे हैं। राइट, वहाँ की फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं बड़े बड़े, मतलब वो बहुत अच्छे कारीगर हैं, लेकिन उनको वापस आने को बोलो तो आना नहीं चाह रहे हैं।
1: ये बात तो
0: वापस आकर वापस आकर वही काम अगर वो यहाँ करे, पुणे में, महाराष्ट्र में, कुल्फी महाराष्ट्र में बिल्कुल रॉयल, वहाँ पे कुल्फी का मतलब बहुत ही रॉयल डेजर्ट है, बहुत ही बढ़िया चीज है। तो वो लोग जो वहाँ के कारखाना में काम कर रहे हैं, वहाँ का बहुत छोटा सा सेटअप होता है कुल्फी कारखाना का, छोटा सा डालना चाहें तो, अगर बिहार में डालें, अपने गांव घर में डालें, तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और जो नए स्टार्टअप वाले हैं, उनको बस यही कहूंगा कि देखिए, अपॉर्चुनिटी उनको ढूंढ रही है, वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, सही जगह पे आके मिलना है बस, और लड़ना तो पड़ेगा। कुल एक दिन में ना इन्वेस्टमेंट, अभी तक हमने किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया किसी कहीं, क्योंकि हम उस लेवल पर जाके इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं जहां बहुत बड़ी बात हो, 2 लाख 5 लाख 10 लाख इन्वेस्टमेंट की बात ना हो। उसके लिए हमें अभी मार्केट में जाना जा रहा है, धीरे धीरे मार्केट में एस्टेब्लिश होना पड़ेगा। और जो लोग भी प्रोडक्शन में आना चाहते हैं ना, जो लोग भी किसी चीज का, अभी मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, भैया इसका कारखाना डाल लेते हैं ना, उसका कारखाना डाल लेते हैं ना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना से इतना 10 लाख मिलेगा, ये वाला डाल लेते हैं ना, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि माल बनाना या प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, तो कोई बना ले, बेचना बहुत मुश्किल है। आखिर माल तुम बना तो लोगे, बेचोगे कहाँ? तो सबसे पहले उनको अपना मार्केट तैयार करना पड़ेगा, मार्केट तैयार होने में टाइम लगता है। प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट तैयार होने में टाइम लगेगा, बिकेगा माल।
1: और अंत में आपका कोई पसंदीदा गीत जिससे आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हों?
0: चला जाता हूँ किसी की धुन।

0: ये हमेशा सुनता हूँ मैं।
1: बिल्कुल। तो धन्यवाद अनुप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे युवाओं को अपना गाइडेंस देने की जर्नी रही उसको शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके श्रोताओं का भी।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे मेरे जीवन साथी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गाना। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की रोजगार अपडेट्स।
1: दोस्तों बात करते हैं एसएससी की। तो एसएससी ने 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर आवेदन हेतु भर्ती योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन भरा जाएगा। आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी अंतिम तिथि है 18 जुलाई 2026।
0: दोस्तों अगली भर्ती है NIACL से। अप्रेंटिसशिप की कुल 550 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2026। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट www.bfsisssc.com से प्राप्त किया जा सकता है।
1: अब बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के कुल 1,500 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरा जाएगा ऑनलाइन और इसकी अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। इसकी विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं www.sbi.gov.in।

0: bank.in से प्राप्त किया जा सकता है।
1: दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है उस सेगमेंट की जिसका हमें और आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी रोचक तथ्य की। तो प्रिया, आज क्या खास लेकर आई हैं आप?
0: बिल्कुल अंजलि, और शुरुआत करते हैं आज बेहद रोमांच रोचक तथ्य जो है भारत के एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान से। जी हाँ दोस्तों, भारत का गगनयान मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, और खास बात यह है कि इसमें अब आम नागरिकों को भी अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई जा रही है।
1: बिल्कुल प्रिया, और इतना ही नहीं, ये भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक नया अध्याय होगा। अब सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम लोग भी अंतरिक्ष की सैर कर सकने के लिए सोच सकेंगे। कितना रोमांचक होगा, है ना?
0: बिल्कुल अंजलि, और अब और अपने श्रोताओं को बता दें महत्वपूर्ण रोचक तथ्य। तो अंजलि, क्या आप जानती हैं कि रेडियो तरंगे कितनी तेज चलती है?
1: जी हाँ प्रिया, रेडियो तरंगे प्रकाश की गति से चलती हैं, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।
0: यानी आप समझ गए होंगे, आप जो रेडियो सुन रहे हैं आपकी आवाज पलक झपकते ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है। दोस्तों तो बात करते हैं, अब रोचक तथ्यों की तो बात हो ही गई अंजलि।
1: तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गाने की ओर, जो कि शायद हमारे कार्यक्रम का आखिरी गाना होगा, शंकर महादेवन की आवाज में फिल्म दिल चाहता है।

0: दोस्तों, बातों बातों में पता ही नहीं चला और अब हमें इस सफर को अंत करना होगा। यहीं थमता है ये सफर। और आज की प्रेरक पंक्ति से लेकर के स्वामी जी की महासमाधि और कुल्फिया स्टार्टअप, सहकारिता दिवस और बहुत सारे सेगमेंट्स बहुत ही शानदार रहे।
1: बिल्कुल अंजलि, और हमारे दोस्तों का साथ ही इतना प्यारा है कि समय का पता ही नहीं चलता। पर कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे और लौटेंगे ढेर सारी नई बातों के साथ।
0: एकदम सही प्रिया। और दोस्तों, चलते चलते बस यही कहूंगी कि मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं।
1: वाह अंजलि, बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि मंजिलें मिल ही जाएंगे भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो दोस्तों, आज जो आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है feedback@patna8thedate@gmail.com।
0: हमें आपके सारे सजेशंस का इंतजार रहेगा। तो अब आज के लिए अंजलि,
1: और प्रिया को दीजिए इजाजत।
0: फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी पटना।
1: नमस्कार।

ये था युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ज पर। प्रस्तुत है मगही कार्यक्रम मागधी।

मगध के सुनिहार श्रोता लोगिन के दिव्या भारती के प्रेम भरल प्रणाम। श्रोता लोगिन, आकाशवाणी के 90 से ज्यादा बरिस में मगध के ऐतिहासिक मगधी भाषा और लोक संस्कृति के सहेजे में आकाशवाणी पटना के भूमिका बहुते महत्तम वाला है। एकर मुख्य योगदान में मगध के पारंपरिक संस्कार गीत में सोहर समदाउन और ऋतु गीत में चैती फगुआ के रिकॉर्ड करके आकाशवाणी इस सब के विलुप्त होवे से बचाइल है और ग्रामीण कलाकार के राष्ट्रीय मंच दिले है। प्रसिद्ध कार्यक्रम मागधी और चौपाल एवं खेती गृहस्थी के माध्यम से गीत वार्ता भेंट वार्ता परिचर्चा कृषि और सामाजिक विषय के जानकारी मगही में दिल गेले है, जेकरा से आम जनमानस में ई भाषा के गौरव के बना के रखले है। मगही कवि साहित्यकार के मंच देवे के साथ साथ ऐतिहासिक लोक आख्यायन माने की लोरी कायन पर आधारित रेडियो नाटक के मगध के वाचिक परंपरा के जीवंत रखल है। आकाशवाणी भगवान बुद्ध और महावीर के ज्ञान भूमि के भाषा मगधी के खाली एगो बोली नए बलुक मगध के संस्कृति के पहचान के रूप में सहेजे वाला एगो जीवंत पुस्तकालय के भूमिका निभाल है, जेकरा से हम सब कभियो नहीं भूलेबे और समय के साथ आशा है कि आकाशवाणी में मगहियन लेल और भी बेहतर कार्यक्रम होबैत रहते। और भाई एगो और बात, श्रोता लोगिन देखथिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई के पहला शनिवार माने कि 4 जुलाई के मनावल जाए, आज के दिन शनिचरे के। ऐसो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय कैल गेल आधिकारिक थीम है एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। ई थीम ई बात पर जोर दे है कि कैसे सहकारी मॉडल समाज में एकजुटता सामाजिक न्याय आपसी विश्वास और समावेशी विकास के बढ़ावा देके विश्व शांति के मजबूत कर है। अंतर्राष्ट्रीय सहकार

नागरिकता दिवस 2026 हमनी के याद दिलावा है कि ई दुनिया के बड़ समस्या के समाधान प्रतिस्पर्धा में नए बलुक सहयोग में छिपल है। सहकारी आंदोलन इस साबित कैलन है कि बिना कोई के शोषण के भी एगो सफल और मुनाफा वाला आर्थिक मॉडल खड़ा केल जा सकले है। एगो शांति वाला विश्व के लेल सहकारिता के इस संदेश आय के समय के सबसे बड़ जरूरत है। जब समाज के हर वर्ग मिलके काम करथिन तब ये हम एगो ऐसन भविष्य के निर्माण कर पैबे जे नहीं खाली आर्थिक रूप से समृद्ध होते बल्कि सामाजिक रूप से भी शांत, सुरक्षित और समावेशी होते। अब हम भाई अपने अपने से बतियावित रहम तो आगे के कार्यक्रम के कैसे बढ़ाम, अपने के मनोरंजन करना भी तो बहुत जरूरी है। तो सुनथिन लोकगीत रजनीकांत ओझा मधुकर से।

0: नीमन पूर्वी हले। अभी हमनी सब सुन रही रजनीकांत ओझा मधुकर से ई पूर्वी गीत। अब श्रोता लोगिन देखिन, आय 4 जुलाई के स्वामी विवेकानंद के पुण्यतिथि है, जिनकर उक्ति हले कि उठथिन जागथिन और तब तक नहीं रुकथिन जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद एगो महान भारतीय सन्यासी, योगाचार्य, विचारक और समाज सुधारक हलथिन, जिनकर जीवन आज भी युवा लोगन लेल प्रेरणा के अद्भुत स्रोत है। बचपन से ही वो बहुते मेघावी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के हलथिन। युवावस्था में नरेंद्र नाथ के जीवन एगो निर्णायक मोड़ पर आयल जब वो रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन प्राप्त कैलन। रामकृष्ण उनकर भक्ति, सेवा और आत्मज्ञान के मार्ग देखैलन। गुरु के देहावास के बाद स्वामी विवेकानंद संन्यास ग्रहण कर लेलन और स्वामी विवेकानंद के नाम ग्रहण कैलन। वो अपन जीवन के उद्देश्य खाली आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं रखलन, बल्कि एकरा समाज के सेवा, शिक्षा, राष्ट्र के चेतना के लगे भी समर्पित कर देलन। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गेलथिन और शिकागो के आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लेलथिन। वहां उनकर भाषण सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका सौंसे दुनिया में प्रसिद्ध होले। ई भाषण में वो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के संदेश प्रस्तुत केलन कि धर्म खाली अनुष्ठान और कर्म कांड के नाम नहीं है, बल्कि सर्वधर्म समभाव, मानवता और सार्वभौमिक भाईचारा के मार्ग है। उनकर विचार न खाली विदेशी समाज के लगी, बल्कि भारतीय युवा के भी गहरा प्रभावित केलक। भारत लौटे के बाद स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के स्थापना केलन। एकर उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और सहायता और समाज सेवा के लेल बढ़ावा देना हले। इनकर प्रमुख पुस्तक में शामिल है राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग, जे भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर के प्राप्त करे के मार्ग देखावा है। स्वामी विवेकानंद एगो महान देशभक्त, कुशल वक्ता, विचारक और मानव प्रेमी हलथिन। उनका युवा पीढ़ी और क्षमता और उनकर परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास हले। उनका भारत के गौरव में के लगी मानल जाए और उनका देश देशांतर में उज्ज्वल करे के सदैव प्रयत्न कल गए है। तो उनका भाई पुण्यतिथि पर सत सत नमन है। एक साथ हम अपने सबके सुनवा रही वार्ता, पर्यावरण के प्रदूषण के बचाव में लोगन के योगदान। वार्ता का रहथिन उपेंद्र कुमार।
1: एगो ऐसन समय हलै ओकरा में लड़कन लोग पेड़ पौधा और तितली के साथ जुड़ा रहा हलथिन। पहले के लड़कन लोग पेड़ पौधा लगावा हलथिन और ओकर फल खा हलथिन। आज ऐसन देखे ले नहीं मिला है। सभे लोग सरल जीवन जिया हलथिन और प्रकृति से जुड़ा रहा हलथिन। आज अपन जीवन जटिल बना देलथिन है। आज लोग कूड़ा कचरा जहाँ तहाँ फेंक दे हथिन, जेकरा से प्रदूषण फैल जा रहले है। आज तेजी से मोटर गाड़ी और मोटरसाइकिल बढ़ रहल है, ओकरा से पर्यावरण प्रदूषित हो गेल है। इकरा से तरह तरह के घातक बीमारी हो गेल है, ओकर बचावे में बड़गो योगदान कैल गेल है। एकरा पे सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रहलथिन है। ऐसन अभियान में सरकार बतैलथिन है कि सभे लोग के भागीदारी चाही। इस अभियान के तहत बरगो नदी, छोटकी नदी और नालों के सफाई कैल जा रहले है। सरकार कचरा ढोवे वाला कर्मचारी बाहर कैलथिन है, जेकर काम कूड़ा कचरा उठा

आकर स्वच्छ बनावल जा रहले है। आज ऐसा समय देखे ले मिल रहा है कि सभी लोग पेड़ पौधों के काट कर मकान बना रहल थीन है। एकरा से ऐसा भे गेल है कि 100 आबादी पर एगो पेड़ देखे ले मिल रहा है। एकर चलते प्रकृति संतुलन बिगड़ गेल है और पर्यावरण प्रदूषित पर भे गेल है। ई बचावे के खातिर सभे लोग को अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगावे के चाही। हमनी सभी के ई समस्या में बढ़ चढ़ के भाग लेवे के चाही। हमनी सभे लोग जाने हिए कि पेड़ पौधा से ऑक्सीजन मिले है, ओकरा लोग तेजी से खत्म कर रहल थीन है। एकरा चलते आज लोग के ऑक्सीजन नहीं मिल रहले है, ओकरा चलते तरह तरह के बीमारी फैल गेल है और आयु में भी कमी आ गेल है। लोग फल फूल नहीं खाकर आज फास्ट फूड खा रहल थीन है। एकरा से लोग मोटा और कम आयु में बूढ़ा हो रहल थीन है। आज के लोग पैक कैल भोजन खा रहल थीन है, जेकरा से प्रदूषण फैल रहल है। ओकरा बचावे के खातिर पैक कैल भोजन नहीं खाए के चाही। आज प्रदूषण के समस्या ई भे गेल है कि लोग प्लास्टिक के उपयोग धरले से कर रहल थीन है। हमनी सभी के लोग प्लास्टिक के सामान लावे ही है और ओकरा जहाँ तहाँ फेंक दिए है। ई ऐसन है कि न गला है और न सड़ा है। एकरा से बड़गो समस्या भे गेल है। गाय खाहथिन और मर जाहथिन। बचावे के खातिर सरकार प्लास्टिक और पोलोथीन बर कर रहलथिन है। पहले के लोग एगो गड्ढा कर हलथिन, एकरा में कूड़ा कचरा और गोबर डाल दे हलथिन। ई जब सड़ा हलै ओकरा उठा कर खेत में डाल दे हलथिन। एकरा से खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ जा हलै और अधिक अनाज उपज हलै। आज ऐसा देखे ले मिले है कि लोग आज रासायनिक खाद खेत में डाल हथिन, एकरा से खेत में उर्वरा शक्ति कम गेल है। एकर बचावे से हमनी सभी के कंपोस्ट खाद खेत में डाले के चाही। खेत के फसल में कीटनाशक दवाइया डालकर हमनी सब प्रदूषण के बढ़ा दिल है। ओकरा खाकर सभे लोग बीमारी के शिकार हो गेल है और बड़गो समस्या भे गेल है कि हार्वेस्टर्स मशीन से फसल काट कर ओकरा जला कर प्रदूषण फैला रहल थी हैं। ई समस्या भे गेल है कि हमनी सभी के जीना मुश्किल हो गए। एकरा बचावे के खासिल फसल काट कर जलावे के ना चाही। बढ़ते मोटर गाड़ी फैक्ट्री और अनेकों मशीनरी ईंधन में पर्यावरण प्रदूषित भे गेल है। एकरा बचावे से हमने पहले के लोग पत्र द्वारा समाचार पहुँचावा हलथिन, आज मोबाइल से लोग समाचार पहुँचा रहलथिन। मोबाइल फोन से गाना सुना हथिन और लोग बहरा हो रहलथिन हैं, जीवन खत्म कर रहलथिन हैं। आज टेलीविजन से समाचार और धारावाहिक देखा हथिन, एकरा चलते लोगों के आँख खराब हो रहल है। पहले के लोग समाचार रेडियो से सुना हलथिन, आज रेडियो से समाचार नहीं सुना हथिन, ज़्यादा टेलीविजन से देखा हथिन, जिससे पर्यावरण प्रदूषित भे गेल है। टेलीविजन टावर के रेडिएशन से पशु पक्षी मर जा रहल थीन है, एकर बचावे के चाही। पहले के लोग सुबह सुबह घूमा हकी और व्यायाम कर रहल थीन, एकरा से स्वस्थ ठीक रह हलै। आज ऐसा है कि लोग एको डेग पैदल नहीं चला हथिन और मोटरसाइकिल प्रयोग कर रहल थीन, ई प्रदूषण फैला रहल थीन। पहले के लोग गाय भैंस पाला हलथिन और दूध दही खाकर मजबूत हो जा हलथिन। आज ऐसा लोग डेयरी दूध खा के रहलथिन है, जेकरा से लोग के स्वास्थ्य बिगड़ गेल है। सरकार भी लोगों के गाय भैंस पालने के सहायता कर रहलथिन है, ओकरा समय शुद्ध दूध मिल रहल है। गांव में महिला लोग शौच के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाथिन और घर के बगल में ही शौच कर रहथिन, एकरा से प्रदूषण फैल जा रहल है और अनेकों बीमारी हो रहल है। एकर सुधार के लिए सरकार जगह जगह शौचालय बनवा रहलथिन है। पर्यावरण प्रदूषित होवे के खातिर सरकार अनेकों जगह कूड़ा बॉक्स बना रहलथिन है, सभे लोग स्वच्छता अभियान में शामिल कर रहलथिन है। सरकार कूड़ा कचरा ढोने वाला गाड़ी, नाला साफ करने वाला मशीन
और रोड पे पोछा लगाने वाला मशीन

0: अनेकों मशीन निकाल कर पर्यावरण के प्रदूषित को बचा रहलथिन हैं। स्वच्छता अभियान आज स्कूल के शिक्षक और छात्र बढ़ चढ़ के भाग ले रहलथिन हैं। ऐसा अभियान चलावे के खातिर भारत के ग्राम पंचायत और जिला परिषद ई लोग जुड़ गए है। गरीब के पास पैखाना नहीं है, ओकरा सरकार पैखाना बनावे ला केंद्र सरकार 9,000 रुपया और राज्य सरकार 3,000 दे रहलथिन हैं, और विशेष दर्जा वाला राज्य 10,800 रुपया और राज्य सरकार 12,000 रुपया दे रहलथिन हैं। ऐसन योजना के द्वारा सरकार गांव में पानी, बिजली, नाली और गली कुची पक्की कर रहलथिन हैं। जगह जगह पर ग्राम पंचायत मुखिया चापाकल बिजली नाली पक्कीकरण कर रहलथिन हैं, प्रदूषण पर काबू पा रहलथिन हैं। स्वच्छ भारत विद्यालय के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से चल रहल है और ई शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से कैल गेल है। ई स्कूल के बच्चों के साथ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान दे रहलथिन हैं। कक्षा में प्रयोगशाला और पुस्तकालय को साफ रखना, पैखाना और पीने के पानी को साफ रखना, खेल के मैदान को साफ रखना, स्कूल के भवनों को साफ रखना, ये अभियान चलाकर सरकार पर्यावरण प्रदूषण के रोक रहलथिन हैं। ऐसा योगदान से सभी लोग के भागीदारी लेवे के चाहिए।
1: वाह, बहुत निमन भाई। बात तो बहुत जरूरी है कि हमने के भाई पेड़ पौधा के बचा के रखना है, तभी हमने सब प्रदूषण से बच सक, पानी बढ़िया से मिलते है, बढ़िया पर्यावरण मिलते है। तो अभी हमने सब सुन रही हल वार्ता पर्यावरण के प्रदूषण से बचाव में लोगन के योगदान, वार्ता कर रहे थे उपेंद्र कुमार, तिनका बहुत एक धन्यवाद। श्रोता लोग देखें, अभी वन महोत्सव सप्ताह भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहा है। प्रकृति के संरक्षण, भविष्य के संवर्धन, वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर आथिन, ज्यादा से ज्यादा भाई पेड़ लगाथिन और हरित भारत के निर्माण में अपन योगदान देथिन। एगो पौधा खाली पर्यावरण ही नहीं बल्कि अगला पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य के नींव भी है। तो वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत साल 1950 में तात्कालिक केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री M.K.M. मुंशी द्वारा आधिकारिक शुरुआत कैल गेल हल। पहला राष्ट्रीय वृक्षारोपण सप्ताह जुलाई 1947 में वैज्ञानिक M.S. राघव के प्रयास से मनावल गेल हल, जेकरा जवाहरलाल नेहरू पहला पौधा लगेलन हल। हर साल जुलाई के प्रथम सप्ताह मानसून के आगमन, जेकरा से कि रोपल गेल पौधा प्राकृतिक पानी मिले और उनका जीवित रहे के संभावना ज्यादा से ज्यादा हो, तो वन के कटाई के रोकना, ग्लोबल वार्मिंग के मुकाबला करना और जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना एकर उद्देश्य है। देश भर के स्कूल, दफ्तर और संस्थान में द्वारा बड़ पैमाना पर मुफ्त में पौधा वितरण और सघन वृक्षारोपण लगी अभियान चलावल जाए। तो जुलाई के पहला सप्ताह के चयन ई लेल के लिए हल कि अपने से हम कहबे के लिए कि भाई अभी मॉनसून सक्रिय होबे है, जेकरा से लगावल गेल पौधा जीवित रहे के संभावना सबसे ज्यादा जरूरी होबे है। एकर भाई उद्देश्य है कि तापमान भी नियंत्रित होते और पेड़ के जड़ मिट्टी के कटाव के रोक है और भूजल स्तर के सुधारे में सहायक होबे है। ये वन्य जीव के आश्रय और इंसान के फल, छाया और शुद्ध हवा दे है। इस सप्ताह देश भर के स्कूल, सोसाइटी और सरकारी विभाग में बड़ पैमाना पर वृक्षारोपण के अभियान चलावल जा है। इस साल भी देश में एगो पेड़ माँ के नाम एकर थीम है और स्वदेशी पौधा जैसे नीम, पीपल, आम के लगावे पर विशेष रूप से जोर दिल जा रहे है। और एगो बात के जरूर ध्यान देथिन कि खाली पेड़ लगावल जरूरी नहीं है भाई, ओकरा एगो बेहतर देखभाल करना सही मायना में ई दिन के मनाना है। और जिनका जितना जगह जमीन है नहीं है तो भाई घर में, गमला में भी हरियाली के लिए पेड़ पौधा जरूर लगाथिन, जितना हो सके पर्यावरण के बचाथिन। कितना तरह के भाई पौधा हाथिन, जैसे कि कहल जाए स्नेक प्लांट, ये सब है कि घर के धूल उल के अपना में मतलब समेट लहे। मनी प्लांट

ऑक्सीजन दे, तुलसी के वृक्ष, तो हमने तुलसी के छोट छोट भी पौधा सबके भाई बहुते काम के चीज है, हमने के बहुत ऑक्सीजन दे है, बहुत सारा एकरा औषधीय फायदा है। तो भाई घर के अंदर भी बहुत तरह के देखते ना, पता लगाथिन तब बहुत सारा पौधा है जे इंडोर प्लांट ओकरा आवा है, तो उ सबके छोट छोट गमला में भी लगाथिन। ऐसे भाई जिनका ज्यादा जगह है, जमीन है, वो भाई बड़ बड़ पेड़ लगाथिन और अपन धरती के बचाथिन। एक साथ सुनथिन रजनीकांत ओझा मधुकर से ई गीत।

श्रोता लोगिन, बीतल 1 जुलाई के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हले त और हमनी के ग्रामीण इलाका में भी स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर सबके भागीदारी बढ़ल है। त अब के समय में पहले जैसन परेशानी नहीं है कि इलाज लेल हमनी के दूर दराज जाए के है। बहुत सा जगह में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा भी मिल रहा है। त भाई, बीमारी होला पर सही समय में सही से इलाज करवाथिन, कहे कि स्वास्थ्य ही सच्चा जीवन साथी है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य गांव में रहे वाला लोगन के सुलभ, सस्ता और गुणवत्ता वाला स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। आय के समय में एकर भूमिका पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य बीमारी के उपचार और समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराना है। गर्भवती महिला के देखभाल, सुरक्षित प्रसव और बच्चा के नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करना है। टीकाकरण, स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता के माध्यम से संक्रामक रोग के रोकना है और कुपोषण के रोकथाम और संतुलित आहार के प्रति लोगन के जागरूक करना है। दुर्घटना चाहे बीमारी के स्थिति के प्राथमिक उपचार और समय के में रेफर के व्यवस्था, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दूसर स्वास्थ्य योजना के लाभ ग्रामीण जनता तक पहुँचाना है। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन परामर्श के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टर के सेवा गांव तक पहुंचाना है। एक साथ साथ हमने के समय ओरिया रहले तपन दिव्या के विदा दे दिन। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मागधी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य कार्यक्रमों पर। 6:05 पे आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। 6:10 पे हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 6:20 का समय होगा संस्कृत समाचार का।

6:30 पे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा चौपाल और खेती गृहस्थी। 7:30 पे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

7:47 पे जिले की हलचल, 7:52 पे आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, 8 बजे का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का।

8:15 पे हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 8:30 पे सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे रूपा सिंह से गजल। 8:45 पे होगा समाचार संध्या।

रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पे सुनेंगे खबरें। रात्रि 9:30 पे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती का प्रसारण हुआ, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 10 बजे से 11 बजे तक आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम।

नमस्कार, यह आकाशवाणी पटना है। अब रउआ संजय सिंह से सुनी भोजपुरी में समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपराध पर लगाम लगावे और अदालती व्यवस्था के और ही बढ़िया बनावे खातिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर देले बाड़न। वो आज बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में 3 नया आपराधिक कानून के नीक से लागू करे खातिर रखल गये 2 राज्य स्तरीय सम्मेलन के संबोधित करत रहन। मुख्यमंत्री कहलन कि इंसाफ के प्रक्रिया के तेज और असरदार बनावे खातिर 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावल जाई। हमार संवाददाता बतौलन कि यह सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, हाईकोर्ट के औरी जज लोग, राज्य के सब जिला के सीनियर SP और SP समेत 200 प्रतिनिधि हिस्सा लेलन। संसद के मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से शुरू हुई और ई 13 अगस्त तक चली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बतौलन कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मानसून सत्र से जुड़ल सरकार के प्रस्ताव के मंजूरी दे देले बाड़ी। केंद्र सरकार पायरेसी के खबरन के देखत मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के नोटिस जारी कैले बा। सरकार टेलीग्राम के पायरेटेड फिल्म और OTT कंटेंट के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे के हुकुम देले बा। सरकारी सूत्रन के मुताबिक प्लेटफॉर्म के 15 दिन के भीतर अपन कार्रवाई रिपोर्ट सौंपे खातिर कहल गई बा। एह कदम के मकसद भारत के रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, निर्माता और वितरक लोगन के नुकसान से बचावल बा। ओवरलोडेड गाड़ी पर राज्य सरकार झारखंड से बिहार में आवे वाला बालू और गिट्टी लदल अवैध और ओवरलोडेड गाड़ी सबके खिलाफ निगरानी बढ़ा देले बा। राज्य परिवहन आयुक्त सब सीमावर्ती जिला के DM लोगन के चिट्ठी भेज के ऐसन गड़ियन के कड़ाई से जांच करे और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करे के निर्देश देले बाड़न। राज्य सरकार बहुचर्चित टेंडर घोटाला में धराइल भवन निर्माण विभाग के ओह समय के संयुक्त सचिव मुर्मुक्षु कुमार चौधरी के तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देले बा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत ई कार्रवाई कैले बा। मुर्मुक्षु कुमार चौधरी अभी जेल में बाड़न और अगला आदेश तक उनकर निलंबन जारी रही। जहानाबाद जिला के घोसी थाना इलाका के चौथी पिपरा में फल्गु नदी में बालू खाने के चक्कर में 2 गुट के बीच भयानक मारपीट भइल और करीब 20 गोली चलल। एक घटना में गोली लागे से 7 घायल भइल बाड़न। घायल लोगन के नीक इलाज खातिर पटना मेडिकल

0: मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजल गईल बा। एसडीपीओ कृति कमल बतौली की मामला के जांच शुरू कर दिया गईल बा और गोली चलावे वाला लोगन के पहचान कल जा रहल बा। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में बने वाला वाटर पार्क प्रोजेक्ट के काम में रोड़ा अटकावे के आरोप में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों पर लोकल थाना में प्राथमिकी दर्ज कल गई बा। पुलिस के कहना बा कि ई लोग काम रुकवा दिले रहन और ओहिजा मौजूद कर्मचारी लोगन के साथ मारपीट कैले रहन। भोजपुर जिला के महुली घाट पर बनल पीपा पुल पर पुलिस के वर्दी के धौंस दिखा के आवे जाए वाला लोगन से अवैध वसूली करे वाला गिरोह के 3 सदस्यन के पुलिस गिरफ्तार कैले बा। पकड़ाइल अपराधी लोगन में एगो होमगार्ड के जवान भी शामिल बा। प्रदेश में मानसून के रफ्तार सुस्त पड़ गई जेकरा कारण बारिश के गतिविधि कम हो गई बा। यही वजह से दिन और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज कल गई बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा में राज्य के उत्तरी और दक्षिण हिस्सा में कुछ जगह पर हल्का फुल्का पानी बरसल बा। पूर्णिया के ढेंगरा घाट में सबसे बेसी 28.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड कल गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान बा कि राज्य के बेसी हिस्सा में हल्का बारिश हो सकेला। ओहिजे अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ोतरी होखे के संभावना बा। मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा थाना इलाका में एगो सड़क हादसा में स्कूटी सवार 2 लड़किन के मौत हो गई। मिलल जानकारी के मुताबिक आदि गोपालपुर चौक के पास एगो अनियंत्रित कार स्कूटी में जोरदार टक्कर मार देहलस जेकरा से दोनों लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान दोनों लड़कियन के मौत हो गई बा। मुजफ्फरपुर जिला के सिवाईपट्टी थाना इलाका में आज तड़के अपराधी सब लोग किराना व्यवसायी के गोली मार के हत्या कर देलन। व्यवसायी रोज के नियन डेरा चौक पर बनल मंदिर में पूजा करे गई रहन, वही समय हमलावर लोग ए घटना के अंजाम देलन। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और साथियों को सुनिए, फिल्म का नाम है सनम बेवफा।

फिल्म लेकिन में सुनी लता मंगेशकर को, गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।

0: आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। भारत इज़राइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृत स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां ऊर्जायां परिवहने उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
1: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21वीं शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः। पूर्वं भारतं 25-26 देशेभ्यः ऊर्जा आयातं करोति स्म, इदानीं तत् 40 देशेषु विस्तारितम्। सः सबलं प्रावोचत् यत् वैश्विकोत्पाते अपि सर्वकारेण वातिन्धनस्य मूल्यं 2,000 रूप्यकाणां स्थाने केवलं 50-900 रूप्यकेषु नियन्त्रितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया युक्रेन संघर्षैः समुत्पन्ने

0: नमस्कार उदय भाई,
1: नमस्ते अंजुला बहन।
0: की हाल चाल है? इस
1: सब बढ़िया बस, सब ठीक ठाक। बरुआ ठीक बनी
0: एकदम ठीक ही। और
1: अंजुला बहन? रुआ तो याद हुई, हाथ पर पहले रुआ तो पढ़ ही बनी स्कूल में, जब छोट छोट होकर तो हाथ पर जे बा वो एक एक छेकती वो बेड़ा, आ ओकरा के चीचक चेचक के टीका कहल जाए, छोट छोट जे बा वो टीका लागे।
0: और छोट छोट अभी बहुत बड़का बड़का गो हो गए हैं। तो आजकल तो बहुत तरह के तकनीक है।
1: जे
0: और टीका के बात हम करें तो सबसे पहले जैसे अपने बात करते हैं कि जन्म लेते ही मत के बाद बहुत सारा टीका लेकिन बुतरू के पड़े लगा है।
1: पहले स्कूल में ही सब पढ़े, और स्कूल में जब छोट छोट लड़का रह सन तो ओह बेरा जे बा स्कूल के अनुसार स्कूल में हर स्कूल में एक रेके टीकाकरण चलावल जाए। और ओह समय में जब हम निकल के उम्र रहे तब जे बा चेचक, खसरा, डिप्थीरिया, एकरा के काली खांसी भी हमने का कहिले, कुछ हब्बा डब्बा जकरा के कहल जाए, जे खसरा से
0: हाँ
1: संबंधित रोग होके ही सामान्य तौर पर बच्चन में पावल जाए, तो वह समय टीका दिया है। और टीका जे बा और टीका के लाभ देवल, क्योंकि टीका के एगो बहुत ओकर महत्व ही हो जाला कि यदि सामुदायिक रूप में रुआ टीका देतनी, जैसे सब लोग के एक साथ टीका देतनी,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: कोनो रोग के उन्मूलित करे में वो बड़ा ओकर भूमिका हो जाला। ऐसे
0: बिल्कुल
1: कि सामुदायिक रूप से जब वो खत्म हुई तो पूरा जड़ से खत्म हो जाए, कहीं मान ली रह गई तो धीरे धीरे ओकर फैलाव जे बा फिर होखे लगेला। तो यही से जब भी टीका दियाला तो वो सामुदायिक रूप से पहले दियात रहे। आजकल तो इतना बड़का जे बा लिस्ट मिल जाता लड़का पैदा होते होते, और लोग दिलवाही रहल बा सब टीका आजकल शरीर में
0: जरूरी
1: बच्चे।
0: भी है। आजकल बहुत तरह के रोग भी पैदा हो गए हैं तो यही से बड़का लिस्ट थमा देवल जाए कि कौन महीना में कौन टीका, कौन महीना में कौन टीका।
1: ज्यादा
0: तो
1: ही याद है
0: देखा हमने तो ज़्यादा भाई झेल ली है माई ही, तो
1: वही से
0: लड़का
1: वही।
0: हमारे बीमार ना पड़े, लड़का बचल रहे, तो माई के तो ममता हो भाई कि भाई सब चीज़ पर ध्यान रखना। और खासकर टीकाकरण जो है वो तो समय समय जब आवे तो माई लोग के ज़्यादा रहे कि भाई कल टीका दिलावे लगी है, और होवे के भी चाहिए। लग हमारा ख्याल से जितना बाप के ना याद होवे उतना माई की याद हो जाए। तो खैर ये तो माँ बाप दोनों बराबर रहते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और रोग से लड़े लगी टीकाकरण बहुत जरूरी है। और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त भी ये टीका लगावल जाए। तो टीका लगावे के

0: ओ चार्ट बनल रहे जे सम जकर समय लिखल रहे कि ई फलाना दिन में फलाना टीका लगते और उस दिन में जरूर जा करके टीका लगा लेवे के चाहिए।
1: एक सामान्य सिद्धांत काम करेला कि जैसे ही रुआ टीका दिया लग केहू के शरीर में, तो टीका जे बा ओकरा से ओकरा शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनेला, इम्यूनिटीज बढ़ जाला। कहीं कहीं टीका में जे बस सामान्य हल्का जोन रोग के होला, जोन रोग से हमनी का प्रतिरोध करे के बा, ओकर छोट माने हल्का रोगाणु के भी कुछ एंटीजन देवल जाला, तो ई ओकरा से समर्थ हो जाला धीरे धीरे लड़े में। तो कुल मिला के टीका ये है कि जे एंटीबॉडीज बा ऊ बने लगेला टीका देला के बाद।
0: ताकि वो रोग से लड़
1: हाँ,
0: सके और
1: लड़
0: रोग
1: सके,
0: ओकरा
1: लड़ सके।
0: पर अटैक ना करे, ओकरा पर प्रहार ना करे।
1: यादे हो
0: तो
1: ये भी बहुत झेलले बनी सब हमनी के COVID-19 में,
0: भाई हम सब तो झेलले ही।
1: हमनी के
0: और
1: पीढ़ी देख रहा कि याद रखी।
0: हाँ बिल्कुल
1: पहले वाला
0: बिल्कुल
1: तो जे बा से बा,
0: है ये।
1: लेकिन COVID-19 भी हमनी झेलनी, तो ये पीढ़ी जरूर ओह टीका के ज्यादा बुझ समझ के बुझी।
0: सही बात कहलथिन। और टीका के बाद जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार आवे ओकरा से घबराए के ना चाहिए। और टीवी से बचाव लगी भी टीका हुआ है, OPV पोलियो के खुराक। जैसे अब तो कहलथिन कि एक तरह से पोलियो के उन्मूलन ही हो गए
1: हाँ,
0: हैं।
1: लगभग
0: पहले अक्सर ये रोग आदमी देखला मिलेला है, लेकिन ये टीका के माध्यम से एक पोलियो खुराक पिला पिला करके एक तरह से पोलियो उन्मूलन हो गए। तो 2.5 साढ़े 3 और 4.5 महीना में पेंटावेल के टीका, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया से बचाव लगी ये टीका लगे। और निमोनिया और मेनजाइटिस से बचावे लगी भी ये उम्र में टीका लगावल चाहिए। ऐसे ही समय समय पर बहुत तरह से के टीका है, जेकरा से अब तो बुखार के भी टीका आ गए है कि बुखार भी न लगे। हम तो ये
1: लेकिन
0: भी
1: बुखार
0: हाँ
1: अपना आप में कोनो रोग ना है। बुखार जे बा शरीर के अंदर यदि कोनो रुआ सामान्य संक्रमण हो रहा बा, विषाणु के, जीवाणु के, या कोनो तरह से, तो वह संक्रमण के से जब राउर ब्लड सेल्स जे श्वेत रक्त कण होला, जेकरे के हमनी के एंटीबॉडीज जे बा हमनी के शरीर के अंदर, जौना से कोनो तरह के इन्फेक्शन में वो सीधे लड़े लगेला कि बचाव करे खातिर, तो ये प्रक्रिया जे है ओमे जे बा शरीर जे बा ओकर तापक्रम बढ़ जाला। और इहे जे बा बुखार है, तो टीका यदि बुखार के भी आयल तो एकर मतलब कि ओकर प्रतिरोधन जे बा वो बेहतर ढंग से करे के उपाय बनावल गई।
0: है कि चिकित्सक के अनुसार ही हम एक जगह पर हले तो पता चले कि बुखार अगर से बुखार से बचाव लगी भी शायद टीका पड़ा है। तो खैर टीका के अपना एगो महत्व है यही कि रोग से लड़े के क्षमता ओकरा में विकसित हो जाए। और बहुत तरह के रोग जैसे कि पीलिया हो गए, हेपेटाइटिस ए बी, आजकल तो खतरनाक खतरनाक हेपेटाइटिस भी हो रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारा रोग से बचावे लगी खासकर बच्चा में टीकाकरण जरूर करावे के चाहिए ताकि वो ओकर इम्यूनिटी मजबूत हो, वो संक्रमण से लड़ सके। क्योंकि लैकल बहुत संवेदनशील होवथिन, वो जल्दी रोग के शिकार भी हो जाथिन।
1: वही बोला कि कम उम्र में उनका
0: हाँ
1: विषाणु जीवाणु के संक्रमण हो जाला, जैसे बहुत बार सावधानी ना बरतला, लैका तो लैके हो, ओकर चेतना उतना विकसित ना होला, हर चीज में हाथ के सफाई या फिर कोनो चीज में जैसे ओकरे के गंदा हाथ के ही मुंह में लगा लेना, तो बहुत सारा जीवाणु जे बा वो हाथ के जे हमनी के रेघारी बहु सब में छिपल रहला, तो साफ सफाई यदि ना हो तो वो जे बा संक्रमण कारक हो जाला।
0: तो बच्चों में टीकाकरण ये विषय है हम लोग बातचीत के लिए एकरा पर, और ये ध्यान देवे के चाहिए। माई के साथ साथ जैसे अपने बात करथिन कि माई माई के खाली जिम्मेवारी ना है, बाप के भी जिम्मेवारी है। तो दोनों
1: मैंने एक से कोई भागी, पिता तो पिता, ओकर तो जिम्मेवारी
0: ना,
1: और बढ़
0: आपने
1: जाला।
0: कहलथिन कि मतलब अपने मतलब हमरा हम सब के लेकर के मेहरारू लोग के कि
1: नहीं,
0: अपने तो बुझले
1: हम के नहीं
0: होथिन।
1: याद रखे कि
0: तो मतलब
1: हम तो
0: हम
1: कभी न
0: तनी
1: जिम्मेवारी
0: सा
1: से भागे के बात
0: उधर भी
1: करते।
0: फेंक दिए कि अपने के सबके भी जिम्मेवारी है कि कब
1: अच्छा
0: टीका के समय है। और माता पिता दोनों के कर्तव्य है कि बच्चा में टीकाकरण अवश्य करावे के चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और जीवन भी खुशहाल रहे।
1: अच्छा ये हमनी के बातचीत कहनी, और ये उपयोगी बातचीत हमनी के रहल। अब कार्यक्रम में एगो शिव भजन सुने के कलाकार बनी अनिल कुमार अकेला।

0: अंजुला बहन
1: हाँ
0: शिव भजन रला बढ़िया।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: अनिल कुमार अकेला जी केश्वर रला।
1: और देखते हैं कि अब तो बहुत जल्दी सावन आवे वाला है और सावन के महत्व भी रिमझिम फुहार से है और शिव के साथ जुड़ले हैं।
0: हाँ अभी ही वाला बा,
1: हाँ तो
0: हालांकि
1: ये
0: तनी
1: जी
0: बरसा कम होता है ऐसे आनंद थोड़ा भी ऊपर एहसास
1: बस
0: कम हो रहा,
1: झमाझम जैसे ही भोला
0: लेकिन
1: डमरू
0: लेकिन
1: लेके
0: जैसा ही बरसे
1: बजेथिन
0: लगी फिर आनंद तो उसी रूप में
1: बस।
0: आवे लगी
1: लेकिन
0: तो
1: वो वर्षा जल के महत्व है उदय भाई, और वर्षा जल ऐसे बर्बाद ना देवे के चाहिए कि अभी पानी के देखिन बहुत किल्लत है, और अगर हम वर्षा जल के संरक्षण करें तो ओकर बहुत तरह से फायदा उठा सके।
0: अंजुला बहन ए पर काफी अब चर्चा चल रहा बा कि बहुत जो हमनी के जानकार विद्वान लोग

0: सभी के कहना बा कि आवे वाला समय में पानी के गंभीर संकट हुई। कुछ लोग तो ये कहे लगल कि कोनो विश्व युद्ध ना हो जाए पानी के लेके,
1: पानी के ऊपर सही
0: और
1: बात है,
0: तब जे बा पानी के संरक्षण बहुत आवश्यक हो
1: बहुत
0: जाला।
1: बहुत जरूरी।
0: तो आवश्यकता बा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमने के यहाँ एक कंसेप्ट आइल बा एकरा तहत हमने के पानी के संरक्षण कर रहल बनी, ए विषय पर आज ई वार्ता बा। वर्षा जल का संरक्षण, वार्ताकार बने गरीब नाथ भट्ट।
1: इनका से
0: सुने
1: सुने
0: के
1: ही
0: भट्ट जी
1: उपयोगी
0: की
1: वार्ता।
0: वार्ता।
2: मनुष्य जीव जंतु वनस्पति सबका जीवन इस धरती या दुनिया में तब तक ही संभव है जब तक प्रकृति ईश्वर या अल्लाह ने शुद्ध हवा एवं जल को मुफ्त भरपूर उपलब्ध कराया है। याद रखें, कोई अपना शुभचिंतक हमसे सुंदर मजबूत घर मुफ्त में बनाकर देता है और कहता है सुख सुविधा के साथ इस घर में खुशी पूर्वक रहो एवं अपने बाल बच्चों को भी इसका उपयोग उपभोग करने का तरीका सिखाते रहो ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उस सुंदर स्वस्थ घर का आनंद लेते हुए जीवन गुजारे। परंतु हम क्या करते हैं, आनंद पूर्वक बिना कुछ धन खर्च किए पूरे बाल बच्चों के साथ घर में सुख भोगते जीवन तो चलाते हैं पर उस घर का देख भाल सुरक्षा रंगाई पुताई नहीं करके जरूरत होने पर उसी घर के दो चार ईंट निकाल कर चौकी खटिया के सिरहाने को ऊंचा रखने हेतु उपयोग करने लगते हैं। कहीं घर में घुसने के रास्ते में ही या कीचड़ जमा है तो अपनी सुविधा हेतु घर से 8-10 ईंट तोड़कर कीचड़ से बचने में उपयोग करते हैं पर धीरे धीरे उस घर को तोड़ते और बर्बाद करते जा रहे हैं जिसे किसी ने हमें जीने का साधन दिया था। इस प्रकार हम नादानी क्षणिक स्वार्थ में उस सुखपूर्वक जीवन चलाने वाले घर के साथ साथ अन्याय करते रहेंगे तब वो घर हमसे दुखी होकर टूट कर धस नहीं जाएगा, तब हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, हमारे बाल बच्चों का कल क्या होगा। भाइयों, ठीक उसी प्रकार प्रकृति या भगवान ने दुनिया को शुद्ध हवा एवं शुद्ध जल पानी दिया है। इस दोनों के बिना क्या मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधा का जीवन क्या संभव है? क्या हवा नहीं मिलेगी तब हम सब कैसे सांस लेंगे, कितने मिनट बिना हवा जिंदा रहेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि मीठा पानी जो हम पीते हैं, खेती करते हैं, मीठे फल फूल खाते हैं जिसे पीकर गाय मीठे दूध देती है, पानी के बिना रहने पर क्या संभव है? नहीं है, कभी नहीं है। तब हम इसके संरक्षण बर्बादी से बचाने हेतु क्या करते हैं? याद रखें, हर चीज़ की सीमा होती है, आबादी बढ़ती जा रही है, तालाब पोखर बावड़ी चौड़ कुआं जल जमाव वाली नीची जगह बावली खाली जगह भरकर हम घर कारखाना खेत सड़क रेल लाइन बनाते जा रहे हैं, पानी रुकने की सब इंच इंच जगह भरते जा रहे हैं, जल ऊपर जमा होता नहीं जो धरती सोख कर अपने भीतर जल भंडार कर सके। अपने देश को 3,000 अरब घन मीटर जल की सालाना सभी काम के लिए आवश्यक है और वर्षा से हमारे पूरे देश भर में हमें 4,000 अरब घन मीटर पानी धरती को नसीब होता है पर हम 130 करोड़ लोग इस वर्षा जल का मात्र 8% ही सहेज पाते हैं। सब जल नदी नाले से बहते हुए समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह पाता है। फिर हम धरती के नीचे से पानी को निकालकर ज़रूरत से ज़्यादा बर्बाद करते हैं। आप देखते हैं मात्र 60 वर्ष में प्रति मनुष्य जल की ज़रूरत है, उसमें 70% की कमी हो गई है। धरती जल स्तर 3.5 फीट से 7 फीट तक नीचे चला गया है। चापाकल बोरिंग ने काम बंद कर दिया है। बढ़ती

गर्मी एवं लू से सैकड़ों जाने जा रही है। बच्चों में चमकी रोग का प्रकोप भी पानी के कमी से वातावरण में बदलाव की वजह है। वर्तमान भारत सरकार ने देश में बढ़ते जल संकट से बचाव हेतु जल संसाधन एवं पेयजल स्वच्छता मंत्रालय को विलय कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। प्रधानमंत्री ने देश के सभी ग्राम प्रधानों को व्यक्तिगत पत्र द्वारा आग्रह किया है कि जल संकट से प्रकृति को बचाने हेतु समाज को जागृत करें। नल द्वारा घर घर शुद्ध जल पहुंचाने की योजना चल रही है। पाइप द्वारा जल आपूर्ति भी भूजल से ही संभव है। अब समाज एवं सरकार का कर्तव्य है कि भूजल को पुनर्भरण के उपाय द्वारा वर्षा जल द्वारा उस भूजल की पूर्ति की मजबूत व्यवस्था चले। पहले समाज के संपन्न लोग तालाब कुआं खोदवाना सामाजिक एवं धार्मिक दायित्व समझते थे। आज नदी चौर सूख चुके हैं। नदी की पेटी मिट्टी गाद से भर जाने की वजह से वर्षा जल को संरक्षित करने की उसकी क्षमता समाप्त हो चुकी है। फलतः धरती के अंदर रीस कर भूजल जितना हम निकालते हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। देश भर में छोटी बड़ी 4,500 नदियां सूख चुकी है। विश्व के अनेक जल विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में जल को लेकर होगा। खेती में खोज करनी है कि किस फसल में कम पानी की आवश्यकता है। खेती के उपयोग में आने वाले जल का धान एवं गन्ने की खेती में प्रायः 89% खर्च या बर्बाद हो जाता है। खेत में पानी लबालब भरकर धान की खेती करते हैं। इजराइल इत्यादि देशों में व्यवस्था है कि पौधे की जड़ में बूंद बूंद पानी डाल दिया जाता है। भाइयों, निवेदन है, जल ही जीवन है। जल नहीं तो कल नहीं। वृक्षारोपण बढ़ाएं, तालाब संरक्षित करें, कुओं को जीवित करें। चौर चाचर को अनाधिकृत रूप से भरकर हड़पने को बंद किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचय हेतु प्रत्येक परिवार जल भंडारण की व्यवस्था करे। वर्षा जल की रक्षा भूजल के प्राण हैं। आप प्रकृति को सहयोग दें। प्रकृति जीव जगत वनस्पति की रक्षा करेगा। बंधुओं, आप लोग जानते हैं कि 40-50 साल पहले प्रायः प्रत्येक गांव में गोचर के नाम पर सरकार द्वारा 10-20 एकड़ जमीन खाली छोड़ दिया जाता था। उसमें हरी हरी घास हुआ करती थी। समूचे गांव इलाके के पशु उस मैदान में चराई कर पेट भरते थे। वर्षा होने पर उस घास के मैदान में पानी रुकती थी। धीरे धीरे वर्षा का पानी धरती सोखती थी और उससे धरती के नीचे जल संचयन होता था। प्रत्येक स्कूल कॉलेजों में बच्चों के खेलने का मैदान रहना अनिवार्य था। वह मैदान हरी हरी घास से आच्छादित थी रहती थी। उस माध्यम से भी वर्षा जल रुक रुक कर धीरे धीरे धरती के जल भंडार क्षमता बढ़ाता था। आज प्रायः समाप्त है। दूसरी ओर देखते हैं कि देश में या प्रांत में कहीं बाढ़ से बर्बादी है, कहीं पड़ोस में सुखाड़ से परेशानी है। अभी भारत सरकार ने देश की 60 नदियों को जोड़ने की योजना बनाई है। याद रखें, जंगलों के कटने, पर्यावरण को दूषित करने, पहाड़ों को क्षति पहुंचाने से वर्षा जल में कमी तो अवश्य आई है या अनियमितता हुई है, फिर भी प्रकृति हमें वर्षा द्वारा खपत से 1,000 अरब घन मीटर अधिक पानी देती है। अब आवश्यकता है इसको संरक्षित कर धरती के जल भंडार को बढ़ाएं। जितना भू संग्रहित जल हम खेती, कारखाना या अन्य उपयोग में निकालते हैं उसे उस भाव से पूरा करें। याद रखें, 2001 में प्रति व्यक्ति सालाना 1800 घन मीटर पानी उपलब्ध था। वह 2025 तक 1341
घन मीटर ही होगा एवं अनुमान है कि नहीं।

0: चेते तो 2050 तक यह मात्र 1140 घन मीटर ही प्राप्त होगा। दावा है सचेत रहना चाहिए, जल का बूंद बूंद बचाना होगा, वर्षा जल को आशीर्वाद मान संरक्षित करना प्रत्येक नागरिक का पुनीत कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति सरकार के आय व्यय की बजट की तरह जल बजट बनाकर आमदनी खर्च को संतुलित करें। धन्यवाद।
1: वाह, लेकिन कि वर्षा जल के संरक्षण से आम बजट भी संतुलित हो जाए तो एक बहुत ही फायदा है वर्षा जल के संरक्षण करना। तो अभी हम सब उपयोगी वार्ता सुनते हैं वर्षा जल का संरक्षण, और वार्ताकार हल्थिन गरीब नाथ भट्ट। तो इनका धन्यवाद ये वार्ता लगी। और आगे फिर से झूमे वाला थोड़ा गीत होवे के चाहिए। हाँ, तो कहे ना सुने ये झूमर, और कलाकार हथिन अनिल कुमार अकेला।

0: बताई थी झूमर कैसे लगली। हाँ
1: अनुभव होई रघु अनुभव होई।
0: हाँ
1: पायल में झुनुक झुनुक पायल वाला अंगना में चले के।
0: तो भाई हाँ बोलते हैं, बोलते
1: हैं। हमने तो सुन करके अपने के अनुभव करी ले। लेकिन ई जेबा ये एहसास ही देखी अनिल जी के गीत गावे पर जेबा वो मजबूर कर दिला। कितना बढ़िया शोर में
0: आपने उस रूप से देखल थी ना। हम ये देख ही कि भाई पांव दबा दबा के चले के चाहिए। ओकर महत्व है कि पैर दबा के चले से आदमी अपना शरीर के बैलेंस में रखा थी। यही से पायल पहना के अंगना में चले ला कहा जाए। तो खैर गीत के मिठास है और नारी के श्रृंगार के वर्णन हले
1: मिठास व जीवन के। धन्यवाद दिया अनिल अकेला जी के और समय रही थे का गीत और सुनल जाये। अभी समय संपन्न हो गई अपना कार्यक्रम चौपाल के। थोड़ी देर के बाद खेती गृहस्थी के बातचीत के लिए।
0: खेती गृहस्थी में देखते हैं कि जैसे हम सब चौपाल में बात कर रही बच्चों में टीकाकरण, तो जैसे बच्चा सब में आदमी में टीका की जरूरत पड़े ही, वैसे ही रोग से लड़े लगी और रोग के दुष्प्रभाव ना पड़े ओकरे लगी पशु में भी टीकाकरण जरूरी हो। वही तो पशु में टीकाकरण कराना पशुपालक भाई के ध्यान दे रखे के चाहिए। काहे कि ये पशु के टीकाकरण से पशु के रोग के बचावे में सहायता हो वही और पशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा लगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, बहुत ही खास प्रभाव टीकाकरण से हो वही। और टीकाकरण रोग प्रतिरोधक क्षमता के तो बढ़ावे करे जेकरा से पशु बीमार न पड़थिन और उनखर जे है वो दूध के उत्पादन अगर है तो ओकरा में भी कमी ना आवे। तो पशु में टीका बीमारी के हिसाब से देल जा है, जैसे कि खुरपका मुँहपका रोग लगी कम से कम साल में 2 बार 6-6 महीना के अंतराल पर टीका लगावल जा है।
1: देखिए ओकरा अलावे जो बीमारी पशु में होला गलघोटू, गलघोटू में HS वैक्सीन एकर लगेला साल में 1 बार एकरा के लगावल जाला। मानसून अभी जो समय चलता हो में वर्षा के समय में। एकरा अलावे पशु में लंगरी वैक्सीन भी होला। लंगरी जेबा एकरा खातिर भी वैक्सीन दियाला। BQ वैक्सीन ये भी साल में 1 बार देवल जाला मानसून के समय। बहुत सारा देखेम कि जे हमनी के गाय माल बा जे दुधारू में थनैला रोग भी हो जाला।
0: हाँ।
1: तो थनैला रोग खातिर भी वैक्सीन देवल जाला। एकरा में पशु चिकित्सक के सलाह ले लेवे के चाही। काहे कि कई बार जब एमे मात्रा बढ़ावल जाला
0: और देख दिन कि अभी जैसे कुत्ता में रेबीज से बचावे लगी हर साल रेबीज के टीका लगवा देवे के चाहिए। तो आजकल बहुत खतरनाक भी हो जाए हो जाए कि तो कुत्ता अगर काट लग जाए पालतू हो चाहे गली मोहल्ला के कुत्ता हो तो पालतू कुत्ता के तो जरूरी है लगाना और गली मोहल्ला के भी कुत्ता के लगवावे के चाहिए सर। और पशु के टीकाकरण लगी कुछ बात के उदय भाई ध्यान भी रखे के चाहिए। टीकाकरण खाली स्वस्थ पशु के ही देवे के चाहिए। अगर वो बीमार हथिन या गाभिन हथिन तो उनका टीका से मतलब टीका से अभी लगाना जरूरी ना हो उ घरे जिस समय वो बीमार हथिन और गाभिन हथिन। तो पशु के टीका लगाए जाए तक टीका के ठंडा जगह पे भी रखे के चाहिए ताकि टीका खराब ना हो। और टीकाकरण के 2 से 3 सप्ताह पहले कृमिनाशक दवाई जरूर पिला देवे के चाहे पशु के। एकरा से रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होवे। तो जहाँ तक हो सके

0: तब टीका लगावे लगी अपन राजकीय पशु चिकित्सालय या स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके निःशुल्क या बहुत ही कम शुल्क पर टीका उपलब्ध हुआ है कर और पशु के लगवावे के चाहिए समय
1: मतलब
0: समय
1: सरकार
0: पर।
1: के स्तर पर हर जगह पर्याप्त टीका के उपलब्धता कराओल जा रहा बा। और ई सब टीका जे बा एकरा माध्यम से यदि हमनी का एकरा पर ध्यान दी तो हमनी का अपना पशुधन के स्वस्थ रखे और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। और दुधारू पशु तर वह समझते बनी कि हमनी ज्यादा दूध लेब तो ज्यादा आर्थिक से हमनी का लाभ ले सके। तो आवश्यकता बा कि ये सब चीजन पर ध्यान दी। और
0: तो
1: अब
0: पशु में टीकाकरण किसान भाई पशुपालक भाई जरूर ध्यान देते हैं, या जे भी पशु रखते हैं उनका टीकाकरण जरूर करवा देवे के चाहिए समय समय पर। और बरसात थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके हो रही है, कभी झमाझम भी हो जाए, कभी बूंदाबांदी भी हो जाए, लेकिन उदय भाई का विचार है? ऐसा में तो गीत बने बना ही एगो श्रोता लोग
1: निश्चित
0: के भी
1: निश्चित
0: सुनवावे के
1: निश्चित
0: भी
1: मतलब
0: और अपने भी
1: बरसात
0: सुन
1: बरसात में यहाँ गीत ना हो के बरसाती गीत ही
0: दिन।
1: तो कजरी हमनी के यहाँ गीत के जो विधा बा
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: बहुत ही प्रचलित विधा बा बरसाती गीत बा। तो सुने के अनिल कुमार अकेला जी के स्वर में ये गीत।

0: भौजी भी रेमी झेमी हो गलथिन बताए बताएथिन। तो ये सब लोक गीत के ही मिठास है कि हर रिश्ता के जोड़ल जाए, चाहे सावन के गीत से हो चाहे दूसरे गीत से भी हो। तो
1: हाँ
0: रिश्ता के का महत्व होगा, खूबसूरती का है ये
1: देखिए,
0: हमसे।
1: बरसात में का भौजी, का देवर, का पति, का शौहर, भींग तो सब आदमी चला।
0: पर गर्जे के ना चाहिए बादल जैसन, फटे के ना चाहिए अपना, यही हम कहें। तो हम सब सुन ली इनखा से लोगी, इनखा से आगे
1: कृषक
0: भी सुन
1: जीवन
0: रही।
1: के ये सब मिठास बा। आज हमने एक चर्चा सुने, वार्ता भाई, मृदा परीक्षण के लाभ। मृदा तो सामान्य रूप से हमने के समझी ले मिट्टी।
0: मट्टी,
1: हाँ,
0: हाँ
1: मिट्टी
0: मट्टी।
1: के जो जांच बा वो काहे आवश्यक बा, इस बारे में वार्ता बा, वार्ताकार बनी डॉक्टर निशा कुमारी। सुने के ये वार्ता।
2: आज बहुत सारे किसान भाई मिट्टी परीक्षण के लाभ से अनजान हैं, तो चलिए जानते हैं इसके महत्व और तकनीक के बारे में। हम एक कृषि प्रधान देश में रहते हैं, यहाँ आज भी करीब 70% आबादी खेती पर निर्भर करती है। किसान अपनी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। आपको बता दें कि पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वमान्य रूप से 16 पोषक तत्व आवश्यक पाए गए हैं, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों पोषक तत्व पौधे प्राय वायु या पानी से प्राप्त करते हैं, तथा शेष 13 पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर पौधे भूमि पर निर्भर करते हैं। सामान्यतः ये सभी पोषक तत्व भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते हैं, परंतु खेत में लगातार फसल लेते रहने के कारण मिट्टी से इन सभी आवश्यक पोषक तत्वों का ह्रास निरंतर हो रहा है। असंतुलित पोषण की दशा में फसलों की वृद्धि समुचित नहीं हो पाती तथा पौधों के कमजोर होने एवं रोग व्याधि कीट आदि से ग्रसित होने की संभावना अधिक रहती है, जिससे परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन कम होता है। इसके अतिरिक्त उर्वरक भी काफी महंगे होते जा रहे हैं, अतः इन पोषक तत्वों को खेत में आवश्यकता अनुरूप ही उपयोग करना, जिससे खेती लाभदायक बन सकती है। खेतों में उर्वरक डालने की सही मात्रा की जानकारी मिट्टी परीक्षण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, अतः मिट्टी परीक्षण उर्वरकों के सार्थक उपयोग एवं बेहतर फसल उत्पादन हेतु नितांत आवश्यक है। किसान को खेत का उपजाऊ मिट्टी का सही अंदाजा लगाना जरूरी है, ताकि फसल की अच्छी पैदावार हो सके। इसके लिए खेती की मिट्टी का परीक्षण करना अति आवश्यक है। किसानों को जानकारी होनी चाहिए कि खेत में कौन कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डालनी है। चलिए अब जानते हैं मिट्टी परीक्षण से क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। किसान भाइयों को फसल उगाने से पहले मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए, इससे भूमि में उपलब्ध नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास आदि तत्वों और लवणों की मात्रा था उसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या का पता लगता है, जिससे जैविक शक्ति और पोषक स्तर का पीएच के बारे में भी जाना जा सकता है। जो फसल भूमि की भौतिक इससे इसके साथ ही भूमि की भौतिक बनावट भी मालूम पड़ती है। जो फसल बोना है उसमें खादों की कितनी मात्रा डालनी है इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा भूमि में सहायक रसायन की जरूरत है या नहीं इसका पता चलता है, जैसे जिप्सम, फॉस्फोजिप्सम या पायराइट्स और अम्लीय आदि। मिट्टी की जांच के माध्यम से फसल के सूक्ष्म पोषक आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा सकता है। यह एक उपयोगी पोषक तत्वों के समुचित प्रबंधन में सहायक है। मृदा परीक्षण से उर्वरक की सटीक मात्रा को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की विषाक्तता को नियंत्रित किया जा सकता है। मिट्टी की जांच की रिपोर्ट के माध्यम से फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को वैज्ञानिक रूप से किया जा सकता है। इसलिए हमें लगता है कि मिट्टी की जांच करना खेत की जरूरत है। तो अब चलिए मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेने का सही समय क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों को मिट्टी का परीक्षण फसल बुवाई

बुवाई और रोपाई के एक महीने पहले करना चाहिए, तो वही सघन खेती करने के लिए मिट्टी का परीक्षण हर साल होना चाहिए। इसके अलावा जिस खेत में साल में एक फसल उगाई जाती है, उस खेत में 2 या 3 साल में एक बार मिट्टी का परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए। मिट्टी परीक्षण कराने के नमूने नमूने कैसे लिए जा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मिट्टी के रासायनिक परीक्षण के लिए पहली आवश्यक बात है खेतों से मिट्टी के सही नमूने लेना। न केवल अलग अलग खेतों की मृदा की आपस में भिन्नता हो सकती है, बल्कि एक खेत में अलग अलग स्थानों की मृदा में भी भिन्नता हो सकती है। परीक्षण के लिए खेत में मृदा का नमूना सही होना चाहिए। इसके लिए मृदा का गलत नमूना होने से परिणाम भी गलत मिलेंगे, तथा खेत की उर्वरा शक्ति की जानकारी के ध्यान योग्य बात है कि परीक्षण के लिए मिट्टी का जो नमूना लिया गया है वह आपके खेत के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। नमूना लेने के उद्देश्य में 3 उद्देश्य होते हैं। फसलों में रासायनिक खादों के प्रयोग की सही मात्रा निर्धारित करना, तथा ऊसर एवं अम्लिक भूमि के सुधार तथा उसे उपजाऊ बनाने का सही ढंग जानने के लिए हम मृदा परीक्षण करते हैं। बाग व पेड़ लगाना, भूमि की अनुकूलता तय करने के लिए भी हम मृदा परीक्षण करते हैं। मृदा परीक्षण से हम उर्वरता मानचित्र तैयार करने के लिए कर सकते हैं। यह मानचित्र विभिन्न फसल उत्पादन योजना निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है, तथा क्षेत्र विशेष में उर्वरक संबंधी जानकारी देता है। अब जानते हैं मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना लेने की विधि। किसान भाई को नमूना लेने के लिए खेत में मिट्टी परीक्षण के सबसे पहले जिस खेत का नमूना लेना हो वहाँ 8-10 जगह निशान लगा देना चाहिए, और उस स्थान से घास फूस कंकर पत्थर हटा देना चाहिए। अब फावड़े या खुरपी से भी आकार का करीब 15 सेंटीमीटर गहराई तक गड्ढा खोद कर मिट्टी अलग कर देना चाहिए। इसके बाद दीवार के साथ पूरी गहराई तक मिट्टी की परत काट कर निकाल ले। ऐसे ही खेत के बाकी स्थानों से भी मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। अब सभी नमूनों को किसी साफ कपड़े या फिर पॉलिथीन पर अच्छी तरह मिला ले, जिस नमूने को एक वर्गाकार या गोलाई में फैलाकर 4 भागों में बांट ले, और आमने सामने के 2 भागों को रख कर बाकी फेंक दे। जब तक मिट्टी का कुल नमूना करीब 500 ग्राम ना रह जाए, तब तक इस प्रक्रिया को करते रहना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के नमूने को लेकर एक साफ थैली में रखें और अपनी जानकारी लिखकर नजदीक के प्रयोगशाला में भेज दें। मिट्टी का नमूना लेते वक्त कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे किसान भाइयों को खेत से नमूना लेने वक्त कई विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान दे कि उन स्थानों से नमूना ला ले जहाँ जहाँ पर खाद, उर्वरक, चूना, जिप्सम या फिर अन्य कोई भूमि सुधारक रसायन तत्काल लगाया गया हो। इसके अलावा ऊसर आदि की समस्या से ग्रस्त खेत या उसके किसी भाग से नमूना नहीं लेना चाहिए, तो उस स्थान से अलग से नमूना ले। ध्यान रहे गीली मिट्टी का नमूना ना ले। अगर किसी वजह से गीली मिट्टी है तो उसको छाया में सुखाने के बाद ही परीक्षण के लिए भेजें। साथ ही मिट्टी के नमूनों को खाद के बोरों, ट्रैक्टर की बैटरी आदि से दूर रखना चाहिए। मिट्टी परीक्षण दोबारा कितने समय के अंतराल पे कराए? किसान भाई को मैं बताऊंगी कि कम से कम 3 या 5 साल के अंतराल पर अपनी भूमि की मृदा का परीक्षण एक बार अवश्य करा लेना चाहिए। एक पूरी फसल चक्र के बाद मृदा का परीक्षण हो जाना अच्छा है। हल्की या नुकसानदेह भूमि की मृदा का परीक्षण अधिक आवश्यकता है। वर्ष में जब भी भूमि की स्थिति नमूने लेने योग्य हो, नमूने अवश्य एकत्रित कर लेना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मृदा का परीक्षण केवल फसल बोने के समय करवाया जाए। नमूना एकत्रीकरण करने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे खुरपी, फावड़ा, बाल्टी या ट्रे, कपड़े, प्लास्टिक की थैलियाँ, पेन, धागा, सूचना पत्र आकार आदि आदि किसान के पास होना चाहिए। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में नमूना एकत्रीकरण की विधि भी है, जैसे लवण प्रभावित भूमि से मिट्टी नमूना लेने के लिए 90 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोद कर एक तरफ से सपाट कर ले, फिर वहां से ऊपर से नीचे की ओर 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर तथा 30 से 60 सेंटीमीटर की परत से आधा आधा किलो मिट्टी खुरच कर अलग अलग थैलियों में रख लेना चाहिए। वो परतों की गहराई लिखकर सूचना पत्रक में स्थान का भूजल स्तर से

सिंचाई का स्रोत आदि जानकारी भी लिखकर मिट्टी नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेज देना चाहिए। फलदार पौधे लगने के लिए 2 मीटर तक नमूना लेना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जमीन की गहराई की परतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। साथ ही जमीन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा फलदार पौधों की बरवार के लिए महत्वपूर्ण होती है। 2 मीटर के गड्ढे में एक तरफ सपाट करके 15 से 30 तथा 180 सेंटीमीटर गहराई पर

0: मीटर के गड्ढे में एक तरफ सपाट करके 15 से 30 तथा 180 सेंटीमीटर गहराई पर निशान बनाकर अलग अलग परतों से अलग अलग मिट्टी नमूना एकत्र कर लेना चाहिए। सूचना पत्रक में अन्य जानकारी के साथ परतों की गहराई भी लिखना चाहिए। इस प्रकार के नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए।
1: अंजला बहन,
2: हाँ
1: अभी हमने कई वार्ता सुनत रही है मृदा परीक्षण के लाभ। वार्ता कर रही है डॉक्टर निशा कुमारी।
2: तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छा
1: हाँ,
2: जानकारी देलथिन
1: अच्छा जानकारी।
2: और बहुत लोग कैसे एकरा से फायदा भी उठाए थे किसान भाई। और अब आगे कार्यक्रम के बढ़ावे लगी कुछ गीत
1: कार्यक्रम
2: नाद।
1: के अंतिम प्रस्तुति में आज
2: हाँ
1: हमने क्या सुने के पूर्वी स्वर बा अनिल कुमार अकेला के।
2: चला सुनिए लोकगीत।

0: समेटा है लोकगीत। और यही कारण है कि जन्म से लेके मृत्यु तक के गीत हमने सबके हम गावल जाए।
1: देखिए ये हमने कहा संस्कार गीत है, जो धीरे धीरे लोक गीत में परिवर्तित होत गए और हर संस्कार के साथ हमने कहा गीत के ऊपर के स्वर देनी, और तभी मिठास के साथ जब वो लोक स्वर में परिवर्तित होकर लोकगीत के रूप में आए, अलग अलग विधा बा। तो
0: देखें
1: बस
0: कि आपने ये देखें कि मौसम के हिसाब से गीत गावल जाए, तो मौसम के सावन के ओकरा में वर्णन होए। अगर शादी ब्याह में हम गीत गावे तो पूरा नाता रिश्ता के ओकरा में जोड़ल जाए। और इस तरह से लोकगीत का अपना
1: निश्चय तो
0: खासियत है।
1: अच्छा लागल। धन्यवाद अंतिम रूप से अनिल कुमार जी के,
0: बहुत इनका
1: अनिल कुमार
0: धन्यवाद।
1: अकेला रहनी है
0: अब
1: और अब
0: घड़ी
1: समय
0: इशारा कर
1: संपन्न हो
0: ली
1: गई
0: है।
1: बा। चलेगा,
0: नमस्कार उदय भाई।
1: नमस्ते अंजुला बहन।
0: Thank you.

0: अंजला बहन कार्यक्रम के ई अंतिम प्रस्तुति रहला पूर्वी रहला।
1: देखतीन कि लोकगीत के अपना एक ठो मिठास, अपना एक खासियत है और बहुत तरह के प्रसे लोक संस्कृति और लोक

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की। अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर दिया बल। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने एथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताया, कहा यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू कर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्याय व्यवस्था को और तेज तथा प्रभावी बनाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने ये जानकारी दी। इससे पहले बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने समयबद्ध तरीके से मामलों के निष्पादन की व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया था।
1: मैं पिछले 2 साल से लगातार आग्रह कर रहा हूं कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना किया जाए और जरूरत पड़े तो अभी आप किसी को चार्ज दें। जिले में केसेस बहुत लंबे चल रहे हैं और पहले फिक्स था कि 14-15 केसेस को आपको सुनवाई करके पूरा करना है, वो टाइम फ्रेम नहीं हो पा रहा है। इसकी व्यवस्था हमको जो भी सरकार के स्तर पर करना है हमको निर्देशित कीजिए। हमारी सरकार आपको एकदम पूरी तरह आश्वस्त करती है कि रूल ऑफ लॉ के लिए जितनी भी राशि लगाना पड़ेगा हम लोग हर हालत में लगाने का काम।
0: मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण और न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग पर बल दिया।
1: अब AI का उपयोग हम कर सकते हैं और AI उपयोग करने से सब पता चल जाएगा कि कौन थाना में आया था, कौन कहीं क्राइम यदि CCTV कैमरा में हो रहा है। यदि हम AI को यूज करते हैं तो आपको रेड फ्लैगिंग, ग्रीन फ्लैगिंग या जिस भी तरह के आप अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे उससे आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे कि किस इलाके में हमको अधिक ध्यान देने की जरूरत है और कहां गड़बड़ी हो रही है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान BIPART और बिहार जुडिशियल एकेडमी ने संयुक्त रूप से किया है। सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, राज्य के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र संबंधी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने एथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताते हुए कहा कि यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए

0: लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था।
1: It is supported by scientific evidence.
2: यह वैज्ञानिक प्रमाणों, ऑटोमोटिव निर्माताओं द्वारा व्यापक परीक्षण और उनका समर्थन करने वाली एजेंसियों यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI और SIAM का समर्थन प्राप्त है, और यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ही है जिनका पालन जीवाश्म ईंधन को हरित बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है।
1: The fossil fuels to lower the carbon emissions.
0: केंद्र सरकार ने पायरेसी की खबरों को देखते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों के हितों की रक्षा करना है। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक विकास को गति दी जा रही है और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। आज रोहतास के विक्रमगंज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा राज्य में उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने निर्णय लिया है कि यदि 30 दिन में जो बाकी सब डिपार्टमेंट है, यदि वो उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को लाइसेंस देने का काम नहीं करते तो 31वें दिन उद्योग विभाग सेल्फ अप्रूव सभी लाइसेंसेस को करने का काम करेगा। और अब जो ये 30 दिन का सिंगल विंडो सिस्टम है, ये कोई कागजी या काल्पनिक बात नहीं बल्कि बिहार की सच्चाई है।
0: राज्य सरकार ने झारखंड से बिहार में प्रवेश करने वाले अवैध और ओवरलोडेड गिट्टी लदे वाहनों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों की सघन जांच करने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में गिरफ्तार भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत यह कार्रवाई की है। मुमुक्षु कुमार चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण कर इतिहास रच दिया है। 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाले वैभव भारत की सीनियर पुरुष टीम के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 1989 में 16 वर्ष की आयु में पदार्पण करने वाले सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इधर भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा T20 क्रिकेट मैच मैनचेस्टर में जारी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर और 2 गेंदों पर 84 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 2 छक्के लगाए। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। जहानाबाद जिले के खोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत चैती पिपरा स्थित फल्गु नदी में बालू खनन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 6 लोग घायल हो गए। SDPO कृति कमल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई है।
1: चैती पिपरा गांव में 2 पक्षों के बीच बालू उठाव को लेकर के विवाद हुआ और उसी में गोली चली है। अभी की सूचना के अनुसार 6 लोग घायल हैं। जो भी लोग इसके दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो भी उचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
0: पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोप में स्थानीय थाने में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद तुहन ने नेपाल की नागरिकता रखने वाली 10 महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया के तहत शपथ दिलाई। इन सभी महिलाओं का विवाह अररिया जिले में हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के बोझा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 युवतियों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदि गोपालपुर चौक के पास एक अनियंत्रित कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी जिससे दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के पूरब टोला में करंट लगने से 1 महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बोचाही के पास पिछले गुरुवार को हुई लूट के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट की रकम और हथियार समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। मधुबनी जिले के जयनगर में पेट्रोल पंप पर पिस्तौल दिखाकर लूट की कोशिश कर रहे 2 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने घेर कर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पिस्तौल बरामद की गई है। भोजपुर जिले में महुली घाट स्थित पीपा पुल पर पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर राहगीरों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में 1 होमगार्ड जवान भी शामिल है। बरौनी जंक्शन पर उत्पाद विभाग की टीम ने कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन से 118 ग्राम हेरोइन बरामद की है। मौके से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महोदीपुर गांव में पुलिस ने 1 4-पहिया वाहन से 124 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के सिवायपट्टी थाना क्षेत्र में आज तड़के अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर फोरलेन गंगा पुल के स्लैब का एक हिस्सा गिर जाने से

0: 6 मजदूर घायल हो गए। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय एड्स संगठन के निर्देश पर भभुआ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में रेड रन के तहत 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की। अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर दिया बल। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने इथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताया, कहा यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू कर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शेखपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
1: शेखपुरा जिले में मानसून के आगमन के बावजूद अब तक केवल 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आमतौर पर जून माह में जिले में करीब 165 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन इस बार बारिश सामान्य से काफी कम रही है और यह 30% से भी नीचे दर्ज की गई है। बारिश की कमी के कारण धान की रोपाई सहित खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। इसके चलते जिले में सुखाड़ जैसे हालात बनने लगे हैं और किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष जिले में 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान तथा लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अरहर, मक्का व अन्य खरीफ फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि अब तक 30% से भी कम धान की नर्सरी बिचड़ा तैयार हो सकी है। बारिश की कमी के कारण किसान परेशान हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी का असर भी लगातार जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इधर कृषि विज्ञान केंद्र और जिला कृषि विभाग के सहयोग से जिले में 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने, रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग तथा मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया। बीते दिनों जिले के पुलिस अधीक्षक बलराम कुमार चौधरी का तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर सासाराम के पूर्व पुलिस अधीक्षक हिमांशु को शेखपुरा का 29वां पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जनता के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने और अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की अपनी प्राथमिकता बताया है। शेखपुरा जिले में बीते दिनों केंद्रीय चयन परिषद बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती के विभिन्न संवर्गों की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिससे पूरी प्रक्रिया

0: पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रही। इसके अलावा उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का भी आयोजन किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या में भाग लिया। वहीं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का भी सफल आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण परीक्षा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस बल और उड़न दस्तों की तैनाती की गई थी। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले में नियमित रूप से सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां नागरिकों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया जा रहा है। वहीं बीते माह के अंतिम रविवार से पंचायत विकास दिवस की भी शुरुआत की गई है। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पंचायतों के समग्र विकास को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सामूहिक रूप से सुना और विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले के विभिन्न हिस्सों में भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, प्रभारी मंत्री श्वेता गुप्ता, विधान परिषद सदस्य अनामिका सिंह सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को साझा करते हुए मीडिया को संबोधित किया। इधर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोगों ने आकाशवाणी की विश्वसनीय समाचार सेवा, जन जागरूकता और मनोरंजन के जुड़े कार्यक्रमों की सराहना करते हुए इसे समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी माध्यम बताया।
1: मैं रूबी कुमारी, आकाशवाणी के 90 साल पूरा होने पर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम 40 वर्ष से आकाशवाणी को सुनते आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार हो, चौपाल हो, या गीत गाना हो, या नाटक हो।
2: मैं राम सिंह, मैं आकाशवाणी कार्यक्रम को 1967 से सुन रहा हूं, जिसका आज 90 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसमें कृषि एवं मनोरंजन के अलावा देश विदेश के समाचार का नियमित प्रसारण होता है, जो कि बहुत ही लाभदायक।
0: हाल ही में संपन्न बिहार विधान परिषद उपचुनाव में जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड के सुजावलपुर गांव निवासी ललन प्रसाद विधान पार्षद निर्वाचित हुए। उनके निर्वाचित होने पर जिले भर में खुशी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए क्षेत्र के विकास को लेकर उम्मीद जताई और विश्वास व्यक्त किया कि उनके कार्यकाल में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शेखपुरा जिले में तपेदिक रोगियों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू की गई है। यह अभियान 14 अगस्त तक चलेगा, जिसके दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर संभावित मरीजों की जांच करेगी और टीबी के लक्षण वाले लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना और रोग को समय पर पहचान सुनिश्चित करना है।
3: अभी आप सुन रहे थे शेखपुरा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
4: आकाशवाणी पट्टा से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे बिहार की लोक धुन कल और आज विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं युवा गायक उत्पल उदित, उनसे बातचीत कर रही हैं आकाशवाणी समाचार संपादक निधि श्री।
5: बिहार की मिट्टी की खुशबू, लोक धुनों की मिठास और आधुनिक संगीत के मंच पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले युवा गायक उत्पल उदित आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हाल ही में उन्होंने चर्चित गीत कचौड़ी गली में रेखा भारद्वाज के साथ अपनी आवाज दी है। तो आज इस चर्चा में बातचीत होगी बिहार के बारे में, संस्कृति के बारे में, गीत के बारे में, तमाम बातें होगी। लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्पल जी।
6: बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाशवाणी का।
5: मैं कचौड़ी गली के लिए आपको सफलता की बधाई दूंगी और साथ में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बड़े मंच तक आपका जो सफर रहा, वहां तक पहुंचने का कैसा रहा?
6: बहुत ही मजेदार था। मतलब आई थिंक सब कुछ बहुत कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस होता गया। मतलब हम लोग ये सोच के गाना बनाए नहीं थे कि कोक स्टूडियो पे जाए। हम लोग बस प्रेजेंट करना चाहते थे इस फोक को, जितना भी ऑनेस्टी के साथ, जितना भी ऑथेंटिसिटी के साथ, एक नए साउंड में, नए जनरेशन के लिए। और बस वही था और वो लैंड कर गया तो बहुत ही खुशी। मतलब हर आर्टिस्ट का आई थिंक सपना होता है।
5: मजा आया। हाँ, मिलाकर
6: बिल्कुल।
5: क्या आपको लगता है कि इस तरह के मंच क्षेत्रीय भाषाओं और लोक संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं?
6: डेफिनेटली। मतलब अभी अगर बात करें कचौड़ी गली आने के बाद, तो एक बात जो बहुत अच्छा लगा कि युवा तो है ही, और जैसे जो रीजनल फोक है हम लोग का, मतलब वो कैसे पूरे इंडिया में, मतलब द लव दैट इट इज गेटिंग अभी एमपी, मुंबई, पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से, इनफैक्ट बाहर के बहुत लोग हैं, उनका बहुत मैसेज आ रहा है। तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब वो ग्लोबल अप्रोच, जो नया साउंड का अप्रोच था, वो काम किया।
5: वो बोल खासतौर पर मैं चाहूंगी कि आप सुनाएं हमारे श्रोताओं को।
6: बिल्कुल।

0: खूब आपकी गायकी में बिहार की लोक परंपराओं की झलक दिखाई देती है। बचपन में किन लोकगीतों या गायकों का सबसे अधिक प्रभाव आपके जीवन पर रहा?
1: लोकगीत में मतलब जब हम बहुत छोटे थे तो हमको याद है पापा बहुत सारा लोकगीत बजाते थे, गजल बजाते थे, जिसमें शारदा सिन्हा जी हो गई, कल्पना पटवारी जी हो गई, मालिनी अवस्थी जी हो गई, देवी जी हो गई, और गजल की बात करें तो गुलाम अली जी हो गए, जगजीत सिंह साहब हो गए, मेहदी हसन साहब हो गए, और बस यही यही माहौल रहा हमेशा से। और जब आप बड़े होते हैं तो फिर वो वापस से आपको, और कचौड़ी गली के साथ भी यही हुआ, मतलब लोगों जो भूल चुके थे हम लोग विरासत, एक बार फिर से लोग उसको याद कर रहे हैं।
0: बिहार की सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी ताकत आपको क्या लगती है?
1: यूनिवर्सल जो एक अप्रोच होता है, अगर हम कभी राइटिंग पढ़ें, अगर विद्यापति जी को पढ़ें, तो वो उस वक्त पे ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर पियामोरा बालक है, या वो जिस तरह से शक्तिज्म जिस क्षेत्र से हम आते हैं, और फेमिनिन एनर्जी के बारे में जो बात होती है, उस पर बहुत ज्यादा वो बात करते थे उस वक्त पे, जो कि अभी भी एक बहुत एक बड़ा मुद्दा है। और अगर कुप्रथा बहुत सारी थी उस पे, तो उनका वो जो यूनिवर्सल अप्रोच था, अगर भिखारी ठाकुर को ले ले तो बेटी बचवा है, विदेशिया है, तो ये जो एक यूनिवर्सल अप्रोच था वो बहुत प्रभावशाली है।
0: प्रमोद चंद्रवंशी बिहार के कला संस्कृति मंत्री हैं।
1: हाँ
0: उन्होंने पदभार जब ग्रहण किया तो उनसे सवाल कुछ किया गया, जिसमें उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कला और संस्कृति समाज के मनोविज्ञान को स्वस्थ रखती है, लेकिन आज के गीतों में जो अश्लीलता बढ़ी है, जो फूहड़ता बढ़ी है, वो चिंता का विषय है, वो इसे नष्ट करेंगे। तो मैं आपसे जो अश्लीलता और जो फूहड़ता है, इस पर अगर विशेष तौर पर आपसे अगर
1: हाँ
0: प्रतिक्रिया लेना चाहूं तो क्या कहेंगे आप?
1: मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि अगर 2 साल पहले हम कहीं बाहर जाते थे, तो अगर दोस्तों के बीच में बैठे तो हमारे रीजन के म्यूजिक को जिस तरह से लोग पहचानते थे कि अच्छा ये तुम्हारा म्यूजिक है, और वहीं कन्फाइंड होकर रह गया था कि यही है जो बिहार में, बिहार का फोक म्यूजिक या अच्छा म्यूजिक कोई जान ही नहीं रहे थे। ये एक बहुत अच्छा एक तो कदम है, अगर ये हो जाए स्ट्रिक्टली इस चीज को लागू किया जाए, अश्लीलता खत्म हो। एक मेरा ये भी मानना है कि द कल्चर दैट वी कंज्यूम इज द कल्चर दैट वी क्रिएट, तो एक बहुत बड़ा जरूरत है कि अच्छे गाने बने, अच्छा कला बदलाव जो लाता है समाज में उसमें में उसको दर्शाया जाए। जैसे अगर बात करें इन गानों की, तो अगर आप गानों में कहीं अगर ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं औरतों को, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को सुन रहे हैं, वो आपके दिमाग में जाएगा, और वो कहीं ना कहीं वो एक मासेस को वैसा बनाएगा, आप जो सुनते हैं शायद आप वही बनते हैं, मेरा मानना ये है।
0: बिहार के कौन से लोकगीत या लोक शैली आपको सबसे अधिक प्रिय है? कोई भी, बिरहा,
1: हाँ
0: कजरी?
1: प्रिया, तो दो मतलब एक तो पूर्वी बहुत पसंद है महेंद्र मिश्र जी का, और साथ में भिखारी ठाकुर जी का, जो जितना भी बेटी बचवा हो गया, विदेशिया हो गया, जितना भी उनका प्ले है वो।
0: एक और आपसे चाहूंगी सुनना।
1: जरूर, एक विदेशिया में एक
0: हाँ,
1: ये गाना है, ए सजनी रे सजनी रे सजनी, ए सजनी रे सजनी, पिया गई ले कल कतवा, ए सजनी पिया गई ले कल कतवा, ए सजनी। इसमें एक बहुत सुंदर ये है कि गोड़वा में जूता नहीं खे सरवा पे छतवा, ए सजनी कैसे चलन रहतवा, ए सजनी कैसे चलन रहतवा, ए सजनी।
0: आपको अगर एक वाक्य में बिहार की पहचान
1: हाँ
0: पूरी दुनिया को बतानी हो?
1: हाँ मतलब जो मेहनत, अगर बात करें कहीं भी जाते हैं, अगर हम किसी से भी बिहार के बारे में

0: बात करते हैं तो एक सबसे पहला चीज आता है कि आप लोग बहुत मेहनती हैं।
1: आकाशवाणी ने बीते दिनों 90 साल अपना पूरा किया है, तो आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें।
0: मतलब जिस तरह से आकाशवाणी कंटेंट को, मतलब हम लोग भी बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं, जिस तरह से प्रस्तुति चीजों की करता है आकाशवाणी, बहुत ही, मतलब पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इतने साल पूरे करने के लिए।
1: सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं आज की तारीख में,
0: हाँ,
1: कलाकारों के लिए कितनी संभावनाएं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स ने खोली है?
0: बहुत ज्यादा। अगर बात करें कचौड़ी गली की ही, तो ये बस मेरा एक वीडियो था इंस्टाग्राम पे जिसमें हम एक्सप्लेन किए थे कि कचौड़ी गली जो गाना है उसका मायना क्या है, और वो मेरे जो प्रोड्यूसर हैं ख्वाब, वो पढ़े उसको और उनका मैसेज आया वहीं से, तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज खोल दिया है अगर बात करें सोशल मीडिया और डिजिटल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहूंगी। एक बार फिर से कम समय में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
2: इसके साथ ही आज का सामयिक चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना की प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
4: उड़ान, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम उड़ान में। एक बार फिर से उड़ान कार्यक्रम में हमने आपका स्वागत किया, और वो इसलिए किया कि 2-3 सप्ताह के हमारे इस कार्यक्रम के बाद इतने ज्यादा फोन कॉल आए हैं और लोगों ने जिज्ञासा जाहिर की है, हाँ, कि बीसीए और बीबीए की पढ़ाई क्या सचमुच बहुत ही उम्दा है, क्या इंजीनियरिंग से अच्छी पढ़ाई है, अच्छी है या बुरी है, ये तो हम नहीं कह सकते। चाहे वो खगड़िया हो, पूर्णिया हो, भागलपुर हो, रोहतास हो, बक्सर हो, आरा हो, पटना हो, बहुत जगह से फोन कॉल्स आए। अच्छा लगा उड़ान कार्यक्रम में। हम लगातार हर साल इसी समय आते हैं और आपके करियर की बातें करते हैं, क्योंकि आपका करियर है तो सब कुछ है अच्छा जीवन जीने के लिए। हाँ, आपको अच्छा पैसा चाहिए, अच्छे पैसे के लिए अच्छी नौकरी चाहिए, और अच्छी नौकरी के लिए अच्छी पढ़ाई, और आज तो कहेंगे कि प्रोफेशनल पढ़ाई चाहिए, और बीसी और बीबीए बहुत ही उम्दा पढ़ाई है। हाँ, खास करके जब आपको रोजगार परख पढ़ाई की आप खोज कर रहे हैं उसके अंदर उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से। आर्केड बिजनेस कॉलेज पटना के राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पर है। पिछले 27 वर्षों से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई के साथ युवा साथियों के साथ एकदम खड़े हैं और लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। 100% जॉब असिस्टेंस की यहाँ गुंजाइश बनती है। जी हाँ, अगर और अधिक जानकारी चाहिए बीसी और बीबीए के लिए तो डायल करें 7520-800-800। वाव, क्या नंबर है, 7520-800-800। एक बात और बताना चाहते हैं, दाखिला वहां लें, एडमिशन वहां लें जहां, हाँ, किसी विशेष यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो, और अगर जो स्थायी मान्यता प्राप्त हो तो और भी अच्छा है। और आर्केड बिजनेस कॉलेज बीसीए और बीबीए के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एकमात्र स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। अगर स्थायी मान्यता नहीं है ना, तो बीच में कुछ भी हो सकता है।
5: नहीं, कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
6: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
5: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
6: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
5: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
4: उड़ान, उड़ान में सबसे पहले अब हम स्वागत करते हैं आशीष जी का। और जो सवाल हमसे पूछा गया ना कि इंजीनियरिंग, बीसीए और बीबीए, हम चीजों को खोलकर रख देते हैं। आप समझिए, आप जानिए, आप महसूस कीजिए, आप निर्णय लीजिए, माता पिता, बड़े बड़े भाई बहन, जिससे भी हो, लेकिन निर्णय लेने से पहले इंस्टीट्यूशन को जरूर देखिएगा।

0: आगे और चर्चा करेंगे। नंबर है 7520800800, 7520800800। बीसी और बीबीए के लिए अगर जो आर्केड बिजनेस कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो ये डायल करें 7520800800। आशीष जी एक बात बताइए कि बीसीए और बीबीए और इंजीनियरिंग, इसके बारे में ढेर सारे फोन कॉल्स आए थे, बताइए।
1: देखिए ऐसा है कि अगर आप एक डेटा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, आज के डेट में एक डेटा कहीं मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि आज हमारे देश में जो इंजीनियर्स की जो संख्या, इंजीनियर्स की जो संख्या है वो लगभग 14 लाख के आसपास में है। मैं ये 14 लाख उनको बोल रहा हूँ जिनके पास बीटेक की डिग्री है। इस 14 लाख में से मात्र 4 लाख के पास जॉब है, मात्र 4 लाख के पास। उसके अतिरिक्त 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसके बाद वो कहीं बैंक में काम कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस बेच रहा है कहीं, या किसी ने बिजनेस कर लिया। और बाकी 7 लाख लोग निकल गया, बाकी 7 लाख आज भी रोड पर जॉब के लिए ढूंढ घूमे घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो टहल रहे हैं, उतना पैसा लगा करके, इतना समय लगा करके। मेरा यही कहना है यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आपका मजबूत नहीं है तो केवल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए इंजीनियरिंग मत कीजिए। उसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपकी आपका जो जो टैलेंट है वो एवरेज है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स मैं बताता हूँ, जिस कोर्स को आप जरूर करिए और आप देखिए उसका कितना फायदा आपको मिलता है। उस कोर्स का नाम है बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। 3 साल का कोर्स है। 3 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल आप एमसीए कहीं से कर लीजिए, फिर आपको देखिए कितने सारे एवेन्यूज। एमसीए करने के बाद में बैंक से लेकर के इवन के जो आईटी कंपनी से लेकर के जितनी बड़ी कंपनियां हैं, आप टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का या विप्रो का विज्ञापन उठा करके देखिए, उसमें लिखा रहता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एमसीए, वो एमसीए आप कीजिए बीसीए करने के बाद में, या बीसीए करने के बाद भी इवन बहुत सारी आईटी कंपनीज वो आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अब्सॉर्ब कर लेती है, जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज इन कंपनियों में कंपनी उसका पूरा का पूरा प्रोफाइल हमारे पास है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीसीए एक अच्छा कोर्स है, इस कोर्स को आप करिए और करने के बाद आपको लगेगा आगे चल करके कि हमने इंजीनियरिंग से बेहतर किया। हाँ, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत है, एकदम आप उसमें टॉपर्स में हैं, तो फिर आपको जरूर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगार इंजीनियरों की भीड़, बीटेक स्टूडेंट्स की भीड़, तो मैं मुझे लगता है आप कंपेयर कर दीजिए दोनों को, बीसीए करने के बाद स्टूडेंट्स की भीड़ जो बेरोजगारों की भीड़, और इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारों की भीड़। आपको ये लगेगा कि इंजीनियरिंग में बेरोजगारों की भीड़ ज़्यादा है और बीसीए करने के बाद कम है। तो मेरा समझना यही है कि आप बीसीए करिए और उसका आप लाभ लीजिए, आगे चल के एमसीए कीजिए, बाकी सब मतलब बहुत अच्छा होगा।
0: आशीष जी आपने तो पूरी तरीके से खोल कर सारी चीजें बता दी कि बीसीए और बीबीए और इंजीनियरिंग। जी हाँ, हम अपने से कुछ भी नहीं कहना चाहते, आप एक करियर काउंसलर भी हैं और लगातार लिखते पढ़ते भी रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी आपको लोग देखता है और रेडियो पर सुन भी रहा है। बहरहाल बीसीए और बीबीए हम बार बार कहते हैं, तोता की तरह राजेश रट लिया है बीसीए और बीबीए, क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं, आप नजर उठाकर देखिए ना, बीसीए और बीबीए के लिए ही सारे लोग दीवाने हो रहे हैं और आपके मन के अंदर भी कहीं ना कहीं इन दो कोर्सों ने कहीं ना कहीं जगह बनाई है। चुनने से पहले, हाँ, संस्थान चुनने से पहले बहुत बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। हाँ, बहुत कुछ देखना पड़ता है, एफिलिएशन से लेकर सारी चीजें कि संस्थान कहाँ से एफिलिएटेड है, कहाँ से मान्यता प्राप्त है, किस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, वहाँ फैकल्टी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जॉब का प्लेसमेंट क्या है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। इसीलिए आर्केड बिजनेस कॉलेज का हम नाम लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप यहाँ आके दाखिला ले लीजिए, ना, कभी नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि जो 27 वर्षों से लगातार लगा हुआ है ना बीसी और बीबीए के लिए, तो कुछ तो बात होगी। आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से ही ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, जो राजेंद्र नगर आर्य कुमार रोड सगुना मोड़ पटना में है। एक बार नंबर बता रहा हूं, जरूर डायल कीजिएगा 7520800800, 7520800800। हमने साइंस स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट किए हैं उनकी बात की, पीसीएम वालों की। अब सवाल पूछते हैं आशीष जी से कि आर्ट्स कॉमर्स इन बच्चों के लिए कितना कारगर साबित होगा बीसीए और बीबीए की पढ़ाई।
1: देखिए आर्ट्स से जिसने किया है, वैसे तो देखिए अभी कई विश्वविद्यालय बीसीए के कोर्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी मांगती है 10+2 में, लेकिन कईयों ने रिलैक्स भी कर दिया है। लेकिन मेरा समझना यही है कि यदि आपने आर्ट्स से अगर 10+2 किया है तो फिर बीबीए कोर्स, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन

0: कोर्स बहुत बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी ऐसे फील्ड की तरफ जाना चाहिए जहां पर आपका निश्चित जॉब मिले। वैसे स्थिति में बीबीए कीजिए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद अगर आपने किसी अच्छी जगह से एमबीए कर लिया तो फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सेम मैसेज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी देना चाहूंगा जिन्होंने 10+2 कॉमर्स के साथ किया है, क्योंकि कॉमर्स के बहुत सारे पेपर्स ऐसे होते हैं जो पेपर्स उनको बीबीए में फिर से दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, तो उनको बहुत सुविधा होगी। कॉमर्स करने के बाद अगर आप बीबीए करते हैं उसके बाद एमबीए करते हैं तो आपको फिर पीछे मुड़के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से भी, और जो लोग पूरे बिहार में ये रेडियो पर बज रहा है, आकाशवाणी के सारे केंद्र इसको प्रसारित कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी नजर में अगर ये दोनों कोर्स बीसीए और बीबीए में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसको चुने?
0: देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर आपका 10+2 में पीसीएम रहा है और मैथमेटिक्स अगर आपका ठीक है, अच्छा है, तो फिर आपको बीसीए करना चाहिए। और अगर आपका ठीक है, आपने पीसीएम भी कर लिया है उसके बाद भी, लेकिन मैथमेटिक्स भी एवरेज है, तो आप बीबीए चुन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एमसीए, बीसीए और एमसीए करने के बाद एक आप प्रोग्रामर बनते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो आदमी जिसका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना बेहतर होता है वो उतना ही अच्छी एनालिसिस कर सकता है, और एनालिसिस अगर आपकी जो जो आपकी स्किल अगर है तो आप उतने अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो मेरा समझना यही है कि कुल मिलाकर के अगर आपका, आपको खुद आकलन करना है, अब मार्क्स के हिसाब से मैं चलिए बोल देता हूँ, अगर आपको पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स है या 60% से भी ज़्यादा मार्क्स है तो आप बीसीए ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम है, 60-70% से कम अगर है, तो फिर आपको बीबीए की तरफ जाना चाहिए। और वैसे ही आर्ट्स के स्टूडेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को के लिए भी यही थ्योरी में कहूँगा कि अगर आपको आपके अपने सब्जेक्ट में, अगर मान लीजिए कॉमर्स को, तो मैं बोलूँगा कि वो बीसीए की तरफ ना जाएं, बेहतर है वो बीबीए ही लें, क्योंकि उनका ऑलरेडी उनका कॉमर्स का एक बैकग्राउंड रहा है और आगे चल करके उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ने में सुविधा होगी बीबीए कोर्स में, और फिर आगे एमबीए में भी वही सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ना होगा उनको।
1: वाह वाह आशीष जी, क्या बातें आपने कही। उड़ान कार्यक्रम लेकर आने का हमारा मकसद यही है कि सारी चीज़ों को खोल कर हम अपने एक्सपर्ट से रखवा दें, तार तार कर दें एकदम, कि आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगे कि अगर राजेश बीसी और बीबीए की बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आईएससी, हाँ, जिन्होंने पीसीएम के साथ किया, आर्ट्स के साथ किया, कॉमर्स के साथ किया, कौन सा कोर्स उनके लिए रोजगार पैदा करने में सहायक होगा, कौन से कोर्स को चुनना होगा। जी हाँ, यही हमारा मकसद है उड़ान कार्यक्रम को लेकर आने का, और इसीलिए हम नंबर बार बार बताते हैं, कहीं भी असुविधा लगे, कहीं भी परेशानी लगे ना, तो आर्केड बिजनेस कॉलेज का ये जो नंबर है 7520800 पर बात करें, क्योंकि ये लोग 27 वर्षों के साथ बीसी और बीबीए के साथ चल रहे हैं और न जाने कितने युवा रोजगार में आ चुके हैं। एक बात और कहते हैं कि कोर्स आपने चुन लिया, संस्थान चुनने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। पैसा आप फिर से कमा सकते हैं लेकिन गुजरा हुआ वक्त आप वापस नहीं ला सकते हैं। जहां तक पैसे की बात चली तो अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, 4 लाख तक आपको लोन मिल सकता है जिस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बड़ी बात फैकल्टी, जैसा कि आशीष जी ने कहा है कि फैकल्टी तो आत्मा होती है किसी भी संस्थान की। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी, कहां से मान्यता प्राप्त है वो संस्थान, स्थायी मान्यता प्राप्त है कि नहीं, और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आर्केड बिजनेस कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, हाँ, बीसी और बीबीए के लिए एकमात्र स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। और अगर स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ तो ये स्थिति भी हो सकती है,
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
1: आशीष जी, चलते चलते आर्केड बिजनेस कॉलेज, आज का यूथ और टेक्निकल पढ़ाई, क्या कहना चाहिएगा?
0: मैं समझता हूँ कि आप आइए, अगर आप 10+2 कर चुके हैं और फिर उसके बाद अगर कोई किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आप आइए। आर्केड बिजनेस कॉलेज के 2 कैंपस हैं, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़, और वहां पर आप बीसीए या बीबीए जिसमें भी जो भी जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप डिटेल्स लीजिए, सारा इंक्वायरी कीजिए।

0: और आपको सब समझ में आए। प्लेसमेंट बुलेटिन देखिए, आप देखिए अभी तक कितने बच्चों का, सभी बच्चों का रियल फोटो के साथ में, किस किस कंपनी में वो जॉब में गए हैं, उन सब का पूरा डिटेल्स हम आपको पूरा एक ब्यौरा देंगे लिखित, वो पूरा प्रिंटेड देंगे जिसको आप ले जा सकते हैं, और उसमें पूरा आप देखिए, देख करके आपको समझ में आ जाएगा। क्या पता उसमें से कहीं आपके गाँव का भी कोई बच्चा निकल जाए जो, और उससे फिर आप बात कीजिए, अगर उसमें आपको लिखा हुआ नजर आए उसको फोन कीजिए कि भाई तुम यहाँ पे हो ना, तो आपको बताएगा कि हाँ हम यहाँ पे हैं, इस कंपनी में हैं, ऐसे हैं, और फिर आप आइए, फिर आपको आपको तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मैं फिर कहता हूं आप केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके हम निकालेंगे।
1: थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी चले गए और राजेश के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि उड़ान कार्यक्रम में हम सारी चीजों को खोल कर रख दें और आप उसे सुने, आपके माता पिता बड़े भाई बहनों के साथ बैठकर डिसीजन लें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का डिसीजन है। हमारी समझ से BCA और BBA की पढ़ाई बहुत ही उत्तम है। आप डायल कर सकते हैं, 27 वर्षों से इस कोर्स के साथ काम कर रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज वाले, नंबर है 7520800800, 7520800800। तो राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आरंभ में सुनिए मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी को, फिल्म का नाम है हम।

लीजिए सुनिए, अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह को, फिल्म का नाम है बाहर आने तक। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन।

सुगम संगीत में अभी आप रूपा सिंह से गज़ल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका

0: और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है। ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।

0: आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई सामान की बरामदात 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है, कई दरिया तोगयानी पर हैं। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैनुल अक्वामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निज़ाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मजकूरा प्लांट में मुतनव्वा अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निज़ाम से मस्नूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
1: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
0: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मजकूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक

0: नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट

0: कि 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी का इंडोनेशिया का ये चौथा और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकत दारी तक वसत दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें कलीदी शराकत दारी के तहत अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जकार्ता में वज़ीर आज़म का वहाँ आबाद भारतीय बरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब का भी प्रोग्राम है। इंडोनेशिया में भारतीय बरादरी वज़ीर आज़म के दौरे की मुंतजर है। जकार्ता में इंडिया क्लब के सदर सिद्धार्थ तपाड़िया ने आकाशवाणी से बात करते हुए भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत दोस्ती को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस आला सतही रबते से ये बात नुमाया होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को खास अहमियत देते हैं। उन्होंने इस बात पर पुरउम्मीदी का इजहार किया कि दोनों ममालिक बुनियादी ढांचे, तिजारत, दिफा, ज़िरात, कुदरती वसाइल और दीगर शोबों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीका के 250वीं यौमे आज़ादी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात कलीदी साझेदारी से आगे बढ़कर हैं, जो जमहूरियत, कानून की अमलदारी और अपने अवाम की लामहदूद सलाहियत के मुश्तरका एतमाद पर मबनी है। सनती माहरीन ने कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम रातों रात मुतारिफ नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोचा समझा, मरहलेवार और साइंस पर मबनी अमल है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की साबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम 2018 में सिलसिलेवार तबादला ख्याल और मुतालिका फरीकों के सलाह मशवरे के लिए लोगों के सामने रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे रियासत भर में मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। मुंबई और उसके मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुंबई, थाने और पालघर में स्कूलों को बंद करना पड़ा। पालघर जिले के हिस्सों से सैलाब किसी सूरत हाल की खबर है, जिससे सड़क और रेल ट्रैफिक मुतासर हुआ है। रायगढ़ में अहम दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई है। मुसलसल बारिश से कोल्हापुर में पंचगंगा और दीगर दरियाओं में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की 6 रोजा सरकारी आखिरी रसूमात का सिलसिला आज से तेहरान में शुरू हो गया। इसमें हजारों सोगवार शिरकत कर रहे हैं और ईरान के मरहूम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में दूसरे T20 बैन अलावा क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड की जीत के लिए 191 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 5 ओवर्स में 3 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्र 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए अपना पहला बैन अलावा मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में CGSEMI के आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया, ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा। वैभव सूर्यवंशी बैन अलावा क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर

0: तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है। कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया से याद आ रहा है। जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ माचलिष्ट शानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती।
2: वो उस सौंदर्य का वर्णन करती

0: जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता, उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती, वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुँचते हैं, वहाँ उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ

0: मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा, जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मनिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।
1: मेघ मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उसमें प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
2: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो

0: गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है, इसमें बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही है। अच्छा, शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को ठोटे लगाकर और हू हू करते दौड़ता हूँ तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनको बूंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है, लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे भी वो मांगती है कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इससे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के कशर्फ भी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनसे किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो लिखते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहु पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना

0: आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले, तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, इस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी 4 लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर, वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं,
5: जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हाँ भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना, कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए

0: శూల్ కమండల్ దివ్య శోభని సురసరి స్నాత రాజనీతికి అచల స్వామిని సామ్య ధర్మ ధ్వజ ధరకీ మాత భారత్ భూమి కే మిట్టి సే శృంగార సజానే వాలీ చఢ హిమాద్రి పర విశ్వ శాంతి కా శంఖ బజానే వాలీ. 1945 కే ఆస్పాస్ నా ఏక్ బహుత్ బడా యే చల్ రహా థా కి రాష్ట్రీయతా క్యా హోతీ హై ఔర్ రాష్ట్రీయతా కహీ అంతర్రాష్ట్రీయతా మే బాధిత్ తో నహీ హోతీ. इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है. जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही. जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे. उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है. दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने. लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा. और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं. 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था. बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथीपुरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो. ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50, 60, 70, 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है. दिनकर जी की कविताएं जो है, शानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं. अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण दे करके जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती. दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं. जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था. एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया. वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है. दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने. वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो. तो ये है रामधारी सिंह दिनकर.
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर. अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यही विदा लेते हैं. वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम

आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थामकर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष

0: की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं, जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doyens of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Tumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
0: आज रात पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय के साथ संगत करेंगे तबले पर इमोन शौरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह।
1: Tonight, Pandit Arnob Chattopadhyay is accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksh Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha.
0: Khayal Gayan ke is karyakram ki shuruaat Pandit Arnob Chattopadhyay raag Yaman ke saath karenge. Yeh bandish purvardh mein vilambit ek taal, tatpashchat drut teen taal mein abadh hai.
1: Pandit Arnob Chattopadhyay begins his Khayal recital with Raag Yaman. The composition is set to Vilambit Ektal, followed by Drut Teen.

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल, तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Yaman in the Khayal recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. He now presents Rag Hamir, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। खयाल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज खयाल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: खयाल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द खयाल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है।

0: भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundations.